0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।

कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपनी स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजा जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
11: स्टूडियो 5, एन इस्लामिक रेकॉर्ड लेबल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, गंगदयाल यादव पर अब ईडी करेगी कार्रवाई। नदी में डूबी दूसरी बच्ची का भी शव पुलिस ने किया बरामद। पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की हुई समीक्षा, और खेत बचाओ अभियान की कर दी गई शुरुआत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में कुख्यात लोगों और भू माफियाओं पर पुलिस लगातार कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अब गंगदयाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गोपालगंज पुलिस के द्वारा संगठित अपराध जैसे भू माफिया, कुट रचना, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती, रंगदारी, हत्या और हत्या का प्रयास तथा पशु तस्करी जैसे अन्य अपराधों से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अब अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में नगर थाना कांड संख्या 369/2026 के अभियुक्त गंगदयाल यादव, जो अमवा नक्षेत्र थाना नगर जिला गोपालगंज के निवासी हैं, इनके विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान करते हुए अभियुक्त का गंभीर एवं संगठित आपराधिक इतिहास पुलिस ने पाया है, और इस मामले में अब उनके परिजनों के नाम पर भी बड़ी मात्रा में चल रहे अचल एवं चल संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। जांच में अभियुक्त एवं उनके परिजनों के नाम पर लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को पुलिस ने पाया है। इस दौरान अभियुक्त के द्वारा आय का कोई संतोषजनक एवं वैध स्रोत प्रदर्शित नहीं किया जा सका। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर उक्त परिसंपत्तियों अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित अथवा अर्जित होने की संभावना पुलिस को मिली है, जिसके बाद अब पुलिस इनके आपराधिक इतिहास, आरोप पत्र, परिसंपत्ति विवरणी और अन्य अभिलेखों को आधार बनाते हुए आर्थिक अपराध इकाई को मामला ट्रांसफर किया है तथा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी इस मामले को प्रेषित किया गया है। अब गोपालगंज पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। भविष्य में भी ऐसे सभी अपराधी जिनके विरुद्ध अनुसूचित अपराध अथवा संगठित अपराध के मामलों में आरोप पत्र समर्पित किए जा चुके हैं तथा जिन्होंने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी परिसंपत्तियों की जांच ईडी और ईओयू को दिया जा रहा है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव स्थित गंडक नदी में 3 बच्चियां डूब गई थी। बताया जा रहा है कि अब दूसरी बच्ची का भी शव आज पुलिस ने बरामद कर लिया। रविवार को एक बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मौके पर पहुंचकर पुलिस को जल्द से जल्द बच्चियों की बरामदगी के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में सोमवार को भी दूसरी बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। तीसरी बच्ची के शव को बरामद करने के लिए अभी भी SDRF की टीम लगातार अभियान चला रही है। सर्च अभियान में कई टीमें काम कर रही हैं। 4 दिन पूर्व नाव पलटने से गंडक नदी में डूबकर 3 बच्चियां लापता हो गई थीं, जिनमें 2 बच्चियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में पंखे से एक शव लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गया। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और FSL की टीम के सहयोग से शव को पंखे से उतारने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू की गई। बताया जा रहा है कि मृतक 21 वर्षीय अनुज कुमार शिवहर जिला के श्यामपुर बाटहा गाँव का निवासी है और यह मृतक यहाँ BPCL कंपनी में कार्य कर रहा था। अचानक से इसका शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसको लेकर अब पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आखिर यह हत्या है या आत्महत्या, इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। FSL की टीम ने भी घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जिसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। स्वच्छ गांव और सुरक्षित जलवायु अभियान को लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा सह उन्मुखीकरण बैठक में आवश्यक निर्णय लिए गए। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 1 जून से 5 जून 2026 तक चलने वाले स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की गई और अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता, परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि गांवों में कचरे का स्रोत स्तर पर 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सेनेटरी एवं खतरनाक कचरा में पृथककरण सुनिश्चित किया जाए तथा घर घर से नियमित कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही पुराने कचरे के ढेरों की पहचान कर उनके निस्तारण की दिशा में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को बढ़ावा देने, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 4R सिद्धांत तथा धूलर जल प्रबंधन के 3R सिद्धांतों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर भी विशेष बल दिया गया। साथ ही कचरा से धन की अवधारणा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं अन्य संबंधित कर्मियों के अभियान के उद्देश्यों और नियमावली के प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित एवं जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए जिन सभी विभागों के बीच समन्वय तथा जन भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक। इधर खेत बचाओ अभियान से अब खेती की तस्वीर बदलने और किसानों की तकदीर बदलने को लेकर आवश्यक अभियान की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में मिट्टी की सेहत को सुधारने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि भवन मीठापुर से राज्यव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के साथ संकल्प लिया कि वे अपने खेत की कम से कम 25% भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने कहा कि यह अभियान खेती की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता एवं मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती को संतुलित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के उपयोग तथा कम खाद और सही सलाह के सिद्धांत को अपनाने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि केवल यूरिया या DAP पर ही निर्भर रहने के बजाय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग जरूरी है। साथ ही जैव उर्वरक, कंपोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद के प्रयोग से भी मिट्टी की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। कृषि मंत्री ने किसानों को धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे श्रम, समय और सिंचाई जल की भी बचत होती है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बैरागी टोला के पास तीन मुहानी पर दो मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी। पिछले दिनों इस टक्कर में तीन लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि इसमें दो बाइक की टक्कर में जो लोग घायल हुए थे उनमें दो युवकों की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई है। इसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रविवार को यह घटना हुई थी और स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने तीनों को गोरखपुर रेफर किया था, जिनमें दो की मौत हो चुकी है और तीसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला जज की अध्यक्षता में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करने के लिए जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम न्यायिक पदाधिकारीगण और जिला विधिक संघ के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे लोग तंबाकू से बने उत्पाद या तंबाकू का उपयोग नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी थानों के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस वांछित प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर पुलिस ने भी बिशुनपुर गांव में छापेमारी की और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त विनोद शाह, शंभू शाह और दिनेश शाह को गिरफ्तार किया। अब इन सभी आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन कुर्की अभियान भी चल रहा है। इस अभियान के तहत लंबे समय से फरार एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की वारंट का विधिवत तामिला किया जा रहा है। इसी दौरान कई जगहों पर आज भी कुर्की के आदेश का तामिला किया गया। पुलिस अभियुक्तों के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी न्यायालय आदेशों एवं विधिक प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी प्रत्येक दिन की भांति आज भी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनकर निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिले के कोने कोने से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और उन्होंने भी समस्याओं के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए निर्देशित किया। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे तीन प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी विनोद शाह पिता स्वर्गीय रामविलास शाह, दूसरा शंभू शाह पिता स्वर्गीय मुनेश्वर शाह एवं दिनेश शाह पिता उदय शाह, ये सभी बिशुनपुर थाना गोपालपुर के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जादोपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाते हुए 108 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और तीन चोरी की मोटरसाइकिलें भी पकड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि जादोपुर के रामपुर टेंगराही दियारा क्षेत्र में थानाध्यक्ष ने तमाम दल बल के साथ अभियान चलाया। इसी दौरान सघन तलाशी और जाँच अभियान में लावारिस अवस्था में 108 लीटर देशी शराब एवं तीन मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। इन सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कोई भी वैध दस्तावेज अथवा संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, जिसके बाद पुलिस अब मामले में आवश्यक तफ्तीश कर रही है। फिलहाल तीनों मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को रेफर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गाँव का बताया जा रहा है। इधर भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में अब रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी और गणित समेत कई विषयों में स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शिक्षा मिल सकेगा। इस नए अवसर से स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री, जो जिसके पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, उनके इस महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि निवर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के प्रयास से ही भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में अब इन उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों को मंजूरी मिली है, जिसके बाद स्थानीय छात्रों ने पूर्व शिक्षा मंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनका आभार व्यक्त किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गंगदयाल यादव पर अब ईडी करेगी कार्रवाई। नदी में डूबी दूसरी बच्ची का भी शव पुलिस ने किया बरामद। पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की हुई समीक्षा। और खेत बचाओ अभियान की कर दी गई शुरुआत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहां के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
16: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
17: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
18: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
19: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
20: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
21: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0976-575।
22: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
23: ये है हेमू, नमक का व्यापारी, जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई। बादशाह सलामत, इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत तो इसे मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो।
0: हम एक बेहोश और अधपरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा।
23: अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खत्म करो उसे। बादशाह सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मर्तबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
1: राजा हेमचंद्र विक्रमजीत का अंत हुआ और पानीपत की दूसरी लड़ाई खत्म हुई। राजा हेमचंद्र विक्रमजीत कई इतिहासकारों की राय में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने वाला आखिरी हिंदू राजा था और इसकी जगह ली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। भारतवर्ष में इस बार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की महागाथा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर। भारतवर्ष में इस बार कहानी अकबर की। अकबर का जब जन्म हुआ था तब उसके पिता हुमायूं हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। जन्म हुआ अमरकोट में एक हिंदू राजा के घर, जहां उनकी मां और कुछ लोगों को शरण मिली थी। बचपन के शुरुआती दिन कांधार में बीते, जहां अकबर के चाचा ने उसे बंधक बनाकर रखा था। अकबर महान की जब पढ़ाई की शुरुआत हुई तो पढ़ाने वालों की ही शामत आई। उसे पढ़ाई नहीं, कबूतरबाजी पसंद थी, घुड़सवारी पसंद थी, हाथियों की लड़ाई पसंद थी। बहरहाल किसी तरह दोबारा दिल्ली पर पिता हुमायूं का कब्जा हो गया। लेकिन हुमायूं खुद को मजबूत कर पाता उससे पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया।
2: जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जब अपने पिता हुमायूं की मौत की सूचना मिली तब वो पंजाब के जिला गुरदासपुर के कलानूर में था। अकबर का सिपा सलार और अतालिक यानी गुरु बैरम खान वहां मौजूद था।

0: बादशाह सलामत को सीढ़ियों से उतरते समय सिर पर गहरी चोट लगी है। उनका बचना नामुमकिन है।
1: बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये
0: शहजादे संभालो अपने आप को, ये वक्त रोने का नहीं है, खुद को संभालने का है। और ये बात, जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए।
2: जी हुजूर।
0: सिपा सालार, शहजादे की ताजपोशी की तैयारी की जाए।
2: जो
3: अकबर को जब अपने पिता के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली तब उसकी उम्र 13 साल कुछ महीने थी। हुमायूं की असमय मौत ने हालात बदल दिए। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, मुगल सल्तनत कुछ शहरों और फौजी कैंपों तक ही सीमित थी। किसी भी लिहाज से सल्तनत अकबर के लिए सुरक्षित नहीं थी। पंजाब में मुगल सेना ने सिकंदर सुर को हराया जरूर था,

0: इसके लिए कलानौर में ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया।
1: बैरम खान ने हुमायूं की शाही तलवार अकबर को सौंप दी। इस ताजपोशी के बाद 13 साल के बादशाह ने अपना फरमान सुनाया। अकबर ने अपने फरमान में बैरम खान को सल्तनत का वकील मुतलक यानी राज्य के सभी राजनीतिक और आर्थिक मामलों का जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही खान खाना और सिपा सलार यानी सेनापति भी बना दिया।
0: अकबर की परीक्षा की घड़ी बहुत जल्दी आ गई। अकबर ताजपोशी के बाद भी दिल्ली नहीं गया। बैरम खान ने टारदी बेग नाम के मुगल सेनापति को दिल्ली का गवर्नर बनाकर भेजा और खुद पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जालंधर में रुक गया। तभी बिहार और उत्तर प्रदेश में राज कर रहे आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू ने दिल्ली का रुख किया। खास बात, हेमू ने हारना सीखा ही नहीं था।
1: हेमू के बारे में कहते हैं कि उसने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध लड़े थे, सभी युद्ध जीते थे। वो अपने जीवन के 23वें युद्ध की तैयारी में लगा था। लेकिन 5 नवंबर 1556 को जब हेमू विक्रमाजीत और मुगल सेना के बीच पानीपत में आमना सामना हुआ, हेमू और उसके साथियों ने मुगलों को बुरी तरह से रौंदना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए बैरम खान ने लड़ाई के मैदान से पीछे हटने की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार ने मुगलों के भाग्य को बदल दिया।
0: पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और बैरम खान की फौज हार के कगार पर थी। अपने प्रिय हाथी हवाई पर सवार हेमचंद्र विक्रमजीत अपनी फौज का नेतृत्व कर रहा था। तभी एक तीर न जाने कहां से आकर हेमचंद्र की आंख में घुस गया। अबुल फजल ने कहा, वो तीर नहीं था, खुदा से मिली सजा थी। तीर लगने से हेमचंद्र बेहोश हो गया। हेमचंद्र को बेहोश देखकर उसकी फौज घबरा गई। महावत ने हेमचंद्र को लड़ाई के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। हेमचंद्र विक्रमजीत को बंदी बना लिया गया।
2: ये है हेमू, नमक का व्यापारी जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई। बादशाह सलामत, इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत तो इसे मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो।
1: अबुल फजल कहता है कि बादशाह अकबर ने घायल और अधमरे हेमू को मारने से इनकार कर दिया। उसके बाद खुद बैरम खान ने उसका सिर काट दिया।
3: हम एक बेहोश और अधमरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा।
2: अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खत्म करो इसे।

0: आज से सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मतबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो,
1: मुबारक हो,
0: मुबारक हो, मुबारक हो।
2: जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं,
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी।

0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है, केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
6: कि अकबर को बड़े दिल का दिखाने के लिए अबुल फजल ने ये बातें गढ़ी, जबकि सच्चाई ये है कि अकबर ने ही हेमू के गर्दन पर पहला वार किया। बाद में बैरम खान के वार से हेमू का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद हेमू के सिर को काबुल भेजा गया और धड़ को दिल्ली।
7: एक वर्जन तो अबुल फजल का है कि अकबर ने मना कर दिया, और दूसरा वर्जन बाकी सब मौर्रखों का है, जिसे मैं फरिश्ते का सही समझता हूँ। सर काटना किसी का आसान नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने जो तलवार वार किया उसमें कुछ नहीं हुआ, तो फिर बैरम खान ने बहुत ज़ोर से तलवार से उसकी गर्दन काटी। तो
8: उसके कई किस्से हैं। अकबर ने एक ये भी किस्सा है कि अकबर ने कहा कि, या अकबर के बिहाव पर कहा कि तुम अगर मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा। तो उसने ये कहा कि मैं अगर जीत जाता इस लड़ाई में तो शायद मैं मुसलमान होने की सोच सकता था, लेकिन चूंकि मैं हार, इसलिए सोच सकता था कि मैं ईश्वर का या खुदा का या अल्लाह को शुक्रिया अदा करता मुसलमान होकर के, लेकिन चूंकि मैं हार गया हूँ इसलिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। लेकिन ये सही है कि अकबर ने उसका गला खुद नहीं काटा था।
9: हेमू के अंत को भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ये भी कहा जाने लगा है कि हेमचंद्र विक्रमजीत का अंत नहीं होता तो भारत का इतिहास भी कुछ और होता, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हेमू से ज्यादा यह अफगानों की हार थी। बहरहाल इस जीत ने मुगल सल्तनत में बैरम खान की स्थिति बहुत मजबूत कर दी।
6: बैरम खान का दबदबा 4 साल तक चला, 1556 से 1560 तक। इस बीच बैरम खान ने मुगल सल्तनत को काबुल से उत्तर प्रदेश के जौनपुर तक फैलाया, ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बैरम खान ही ज्यादातर बड़े फैसले ले रहा था। बैरम खान के रवैये की एक मिसाल इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब में देते हैं। एक बार जब अकबर ने 17 रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया। उसकी इज्जत तब बची जब माहम अंगा ने उसे खर्च के लिए पैसे दिए। माहम अंगा ने अकबर को बचपन में अपना दूध पिलाया था और महल में उसका बड़ा रसूख था। एक तरह से बैरम खान के विरोधी खेमे का नेतृत्व वही कर रही थी। दूसरी तरफ अकबर अब 13 साल का बादशाह नहीं था, वो बड़ा हो चुका था।
8: अकबर अब बड़ा हो गया था, 1500 56 में वो गद्दी पर आया था और 1560 तक चार साल में बड़ा हो 17-18 साल का हो गया था, तो अभी भी वो उसको बच्चा ही समझता रहा, अभी भी वो उसको बच्चों की तरह ही उस पर हुक्म तो नहीं चलाता था लेकिन उसको ऐसे ही ट्रीट करता रहा। लेकिन अकबर ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब मैं वाकई बादशाह बनना चाहता हूँ।
9: महल में खींचतान थी, अकबर उससे परेशान रहता था और वो इनसे बचने के लिए शिकार के बहाने बाहर निकल जाता था, लेकिन बैरम खान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से भी वो बचता रहा। बैरम खान के कत्ल का प्रस्ताव भी उसे दिया गया लेकिन अकबर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
10: हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं, बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन बैरम खान के कत्ल का हुक्म हम नहीं दे सकते। जिस इंसान ने हमारी और हमारे वालिद की हिफाजत की हो उसका कत्ल करवाना भरोसे का कत्ल करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी के भरोसे के लायक नहीं रह जाएंगे।
6: अकबर बैरम खान को अपनी सल्तनत के वकील या प्रधानमंत्री पद से हटा देना तो चाहता था लेकिन बैरम खान की शख्सियत और एहसान उसे रोक रही थी। ऐसा बहुत दिन तक नहीं चला। शिकार के बहाने अकबर आगरा से रवाना हुआ, सिकंदरा नाम की जगह पर रुका और फिर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर बैरम खान को हटाने का फरमान जारी कर दिया। बैरम खान ने मुलाकात की इजाजत मांगी लेकिन अकबर नहीं माना।
10: मेरे खान बाबा, आप हमारी मोहब्बत और नेक तमन्नाओं के इस पैगाम को पढ़ें और जान लें कि मौजूदा हालात को देखकर ही हमने दिल्ली में पड़ाव डाला है। जब हमें पता चला कि आप हमसे मिलना चाहते हैं तब हमने ही ये कहलवाया कि आपको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपसे काफी तकलीफ पाई है, आपको फिर भी भरोसा देने के लिए मैंने लिखा है कि बाप बेटे के बीच भी झगड़ा हो सकता है, गैर इत्तेफाकी हो सकती है लेकिन वो कभी अलग नहीं हो सकते। आप आज भी मेरे खान बाबा ही हैं।
6: बैरम खान खत मिलने के बाद आगरा छोड़कर हज के लिए रवाना हो गया।
9: अकबर की शाही फौज बैरम खान के खिलाफ मार्च कर रही थी। बैरम खान के साथियों की संख्या कम थी लेकिन अकबर की सेना उसे हरा नहीं पाई। अंत में अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से परेशान होकर खुद बैरम खान ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया।

खचीवाड़ा की लड़ाई याद है आपको खान बाबा? ये वही तलवार है जिसने मेरे वालिद जन्नत आशियानी नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह की हिफाजत की थी। ये वही तलवार है जिसने पानीपत में हिमू को खत्म कर दिया था और इस तलवार को खुद अपने पास रखने वाला आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता खान बाबा।

0: अकबर ने बैरम खान को कालपी या चंदेरी की सूबेदारी देने को कहा, लेकिन बैरम खान ने कोई ओहदा लेने से इनकार कर मक्का जाने की बात कही। लेकिन बैरम खान मक्का न पहुंच पाया।
1: बैरम का अंत हो गया, वो फिर गया हज पर, हज में। फिर वहाँ पाटन है जगह गुजरात में, वहाँ जाते ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया। तो इस तरह से उसका बहुत ट्रेजिक अंत हुआ।
0: बैरम खान का दौर खत्म हुआ, लेकिन मुगल दरबार में खींचतान खत्म नहीं हुई, उल्टे बढ़ गए। शासन प्रशासन पर माहम अंगा का प्रभाव काफी बढ़ गया। मुनीम खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। मुनीम खान पर माहम अंगा का खास प्रभाव था। इसी दौर में राज्य विस्तार का नया दौर भी शुरू हुआ। माहम अंगा के बेटे आदम खान के नेतृत्व में मालवा पर हमला किया गया। यहाँ बाज बहादुर का शासन था।
2: मुगल सेनापति आदम खान ने क्रूरता की हदें पार कर दी। राजधानी सारंगपुर में कत्लेआम मचाया गया, लूटा गया।
0: जीत के बाद अकबर ने मालवा कूच करने का फैसला किया। कत्लेआम करने वालों को सजा देने नहीं, बल्कि लूट पर कब्जा करने। उस लूट में हरम की लड़कियां भी थी।
3: आदम खान ने वहां जाके जब बाज बहादुर को हरा लिया था, तो बहुत बुरी तरह से ये लूटमार कर रहे थे। उसके जो हरम में वो तीन कंकुबाइंस थी, उनको भी सबको कब्जे में कर लिया था। और बहुत जैसी उनको खबर मिली, वैसे ही ये बगैर किसी को बताए हुए फॉर्स मार्च से वहाँ पहुँचे। और पहले तो उससे सारी बूटी रखवाई, उसके बाद फिर औरतों को छोड़ने को कहा, दो को उसने नहीं छोड़ा। फिर मामानगर इतनी देर में पहुँच गई, उन्हें उसे खामोशी से मरवा दिया।
0: साफ था कि आदम खान बतौर बादशाह अकबर को महत्व देने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने 1561 के अंत तक अपने प्रभाव का विस्तार तेजी से करना शुरू कर दिया। उसने मुनीम खान को हटाकर शमसुद्दीन अतका खान को वजीर बनाया। इतना ही नहीं, आदम खान से मालवा की सूबेदारी वापस ले ली। लेकिन आदम खान कहां मानने वाला था? आदम खान और उसके साथियों ने शमसुद्दीन अतका को ही मार डाला।
4: क्यों मारा तुमने इसको?
2: ये आपका वफादार नहीं
4: था। इसे उठा के छत से नीचे फेंको।
0: अकबर ने आदम खान को उसी वक्त छत से नीचे फेंकने का हुक्म दिया। नौकरों ने नरमी दिखाई तो दोबारा नीचे फेंकने का हुक्म दिया।
4: तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? ले जाओ इसको।
0: अकबरनामा की यह तस्वीर उसी घटना का वर्णन करती है। इस घटना के कुछ दिन बाद माहम अंगा की मौत हो गई।
2: आदम खान और माहम अंगा के अंत के साथ अकबर की जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ और कई मायनों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दरअसल आदम खान के अंत से 4 महीने पहले अकबर जियारत के लिए अजमेर शरीफ गया। वापसी में दौसा के पास उसकी मुलाकात आमेर के राजा भारमल से हुई और यहीं से भारत के महत्वपूर्ण शासक वर्ग राजपूतों के साथ अकबर के संबंध का नया दौर शुरू हुआ।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: चक्रवर्ती की सेवा में निवेदन है।
6: बताइए कछुआराज, क्या चाहते हैं आप?
5: हमारी इच्छा है कि आप हमारे कछुआ वंश के साथ संबंध बनाएं।
6: वो कैसे?
5: आप हमारी बड़ी बेटी के साथ सास सम्मान विवाह करें।

0: जब राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर को दिया तब उसकी हालत बहुत खराब थी। मेवात के सूबेदार ने आमेर पर हमला करके भारमल को एक बड़ी धनराशि देने को बाध्य कर दिया। उसने भारमल के बेटे और दो भतीजों को बंधक भी रखा हुआ था। भारमल के पास अकबर जैसे बड़े बादशाह की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। बहरहाल अजमेर से लौटते समय सांभर में आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर ने विवाह किया। राजा भारमल की बेटी का नाम राजकुमारी हीरा कुंवरी उर्फ हरखाबाई माना गया है। हरखाबाई के बाद भी अकबर ने कई और राजपूत राजकुमारियों से शादी की। हरखाबाई से शादी के बाद अकबर की राजनीतिक दिशा के साथ साथ उसकी सामाजिक सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया।
1: अकबर ने एक नई नीति, एक नया आधार जिसके मैं जिक्र कर रहा था बनाया कि यहाँ के जो राजवंश हैं, जो देशी राजवंश हैं, उनके साथ 300 साल से हम लड़ते आए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना हम उनको ख़त्म कर सके ना वो हमें ख़त्म कर सके, तो इसलिए इनको अपने साथ क्यों ना मिलाया जाए, इनको भी शासन में, राज्य में, साम्राज्य में जगह दी जाए।
2: यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी है कि फिल्मों के जरिए, कुछ कहानियों के जरिए ये बात सामने आती है कि अकबर ने किसी जोधा बाई से शादी की थी, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बनावटी बातें हैं, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है,
1: क्योंकि ये ना जोधाबाई वो थी जो जोधपुर के घराने से आती हैं, और जोधपुर के घराने से अकबर के हरम में कोई नहीं थी, तो ये जोधाबाई अकबर की कोई पत्नी नहीं थी, बल्कि जहांगीर की पत्नी थी जोधाबाई, अकबर की पत्नी नहीं थी। लेकिन ये और अकबर के ज़माने में और अकबर के बाद के 17वीं शताब्दी में इनका कोई जिक्र है नहीं। ये शायद 18वीं शताब्दी से या 18वीं शताब्दी के बाद के हिस्से से ये एक आम जनता में एक शुरू हो गई कथा कि अकबर की सबसे चहेती पत्नी थी जोधाबाई और उसका बेटा जहांगीर था वगैरह वगैरह।
0: अकबर एक तरफ गहरे राजनीतिक फैसले करने में सक्षम था, वहीं कभी गुस्से में तो कभी बेवकूफी में अपनी जान को भी दांव पर लगा देता था। 1564 में दिल्ली में लड़कियों और विवाहित औरतों के पीछे अकबर इस कदर दीवाना हो गया कि उस पर जानलेवा हमला हो गया। अकबरनामा में ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। 1573 में तो उसने राजपूतों की वीरता की नकल में अपनी जान जोखिम में डाल दी। बात तब की है जब वो गुजरात अभियान में सूरत में था और कुछ राजपूत राजाओं के साथ शराब पी रहा था। वहां मानसिंह भी मौजूद था। बातचीत घूम फिर कर राजपूतों की वीरता पर होने लगी।
3: राजपूत अपने जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इतिहास इस बात का गवाह है।
4: बादशाह सलामत, जान लेने और देने के तरीके तो कोई हमसे सीखे। दो धारी तलवार लेकर दो राजपूत एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और तलवार एक दूसरे के सीने के आर पार कर देते हैं।

0: अकबर की इस हरकत को देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। कोई एक लफ्ज नहीं बोला।
1: जानते ना क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं।
0: तभी मान सिंह उठा और उसने तलवार नीचे गिरा दी।
1: हमारी हिम्मत कैसे हुई?
0: अकबर अपनी वीरता को दिखाने के लिए इतना आतुर था कि उसने इस बात की परवाह ही नहीं की कि अगर मान सिंह ने तलवार नहीं हटाई होती तो उसकी जान चली जाती। इतना ही नहीं, अकबर ने गुस्से में मान सिंह को जमीन पर पटक कर मारना शुरू कर दिया। मान सिंह को पिटते देख वहां मौजूद दूसरे लोगों ने मान सिंह की जान बचाई।
2: इन घटनाओं से साफ है कि अकबर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े शासकों सम्राटों में से एक जरूर था, लेकिन फिर भी इंसान था, गलतियां करता था और उन्हें सुधारने की कोशिशें भी करता था। बहरहाल अकबर को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सम्राट अशोक के बाद वो पहला शासक था जिसने धर्म में सुधार की कोशिशें की, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया।
0: कहा जाता है कि जो राजपूत राजकुमारियां अकबर के महल में आईं, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। महल में वो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ करती थी। तब के मौलवी और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने तो लिखा है कि वो अपनी राजपूत पत्नियों के साथ हवन किया करता था, यानी यज्ञ में हिस्सा लेता था। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को खुद से जोड़ने के लिए इसी दौर में अकबर ने दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला था हिंदुओं के तीर्थ पर लगने वाले टैक्स को हटा लिया गया।
3: अकबर साहब मथुरा गए थे वो खेलने, शिकार खेलने, और काफ़ी रुक के वहाँ शिकार खेला। ये पैदल मथुरा से आगरे, उस वक्त आगरे में था कोर्ट, पैदल पहुँच गए और वहाँ जाके जो इन्होंने पहला ऑर्डर निकाला है, अबुल फजल लिखता है पहुँचते के साथ ही, वो ये था कि पिलग्रिमेज टैक्स माफ़। तो इन्हीं ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गरीब से गरीब आने वाले लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं, जो बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, चाहे ये उस श्रद्धा में यकीन रखते हों चाहे नहीं, मगर वो तो आ रहे हैं और उनके ऊपर एक टैक्स लग रहा है। तो इन्होंने उसको फौरन माफ़ कर दिया। तो ये इनका इंसानों के साथ, आदमियों के साथ रहने और उनकी परेशानियां समझने का एक था। इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिसी नहीं थी।
0: अकबर का इसी तरह का दूसरा फैसला था जजिया हटाने का। जजिया वो टैक्स था जो सभी व्यस्क हिंदुओं को उनकी हैसियत के हिसाब से देना पड़ता था। ये टैक्स एक तरह से पराजित हिंदू जनता को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता था। इस टैक्स से मुगल सल्तनत को अच्छी आमदनी होती थी। अबुल फजल ने लिखा है 1564 में यह फैसला अज्ञानी उलमाओं की भारी खुसफुसाहट के बावजूद लिया गया है, जो कि हिंदू सल्तनत के लिए उतने ही समर्पित थे।
2: यह अकबर महान की जिंदगी का वो दौर था जब कहते हैं अकबर कट्टर सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव में था। उनमें से दो मुख्य थे, शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। अब्दुल नबी तो इतना कट्टर था कि उसने अकबर को एक बार केसरिया रंग का कपड़ा पहनने के लिए भरे दरबार में डांटा ही नहीं बल्कि डंडे से मारने तक की बात कही थी। खैर, ये पहला दौर था, जबकि दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब उसने इबादत खाना बनवाया, जहां वो धर्म के जानकारों के बीच बहस को सुनता था और धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ों को बेमानी समझने लगा था।
0: इबादत खाना में होने वाली बहस से अकबर बहुत परेशान हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े ने उसे धार्मिक गुरुओं के निजी स्वार्थ को समझने में मदद की। 1581-82 में तो उसने इबादत खाना बंद ही करवा दिया।
4: अबुल, काश कि हमने मौलाना और उलमाओं के बीच की ये अलग अलग राय नहीं सुनी होती। काश कि हमने कुरान शरीफ की आयत और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े वाकयात के अलग अलग मायने नहीं सुने होते। काश।
0: इबादत खाना की बहस से अकबर परेशान तो था, लेकिन उसके धर्म को लेकर समझ बिल्कुल साफ हो गई थी। वो समझ गया था कि कि सभी धर्मों में सच्चाई के कुछ तत्व मौजूद हैं और सभी धर्म आखिरकार परम सत्ता तक ले जा सकते हैं। यही आगे चलकर सुलह कुल यानी सभी धर्मों के बीच शांति की अकबर की नीति का आधार बना। सुलह कुल ही अकबर को अकबर महान बनाता है।
5: भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ तो एक तरफ तो ईश्वर की, अल्लाह की एक नई अवधारणा थी, एक ईश्वर है और उसकी इबादत का एक तरीका है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में कई ईश्वर हैं, करोड़ों ईश्वर हैं, करोड़ों देवी देवता हैं। ईश्वर तो एक है लेकिन कई करोड़ों देवी देवता हैं, उनके पूजा के करोड़ों तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो इन दोनों अवधारणाओं में, दोनों परिकल्पनाओं में आपस में सामंजस्य भी हुआ, आपस में टकराव भी हुआ। तो इस टकराव की परिप्रेक्ष्य में एक नई अवधारणा उभरी कि हमें अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमारे लिए एक ही ईश्वर है, वो अल्लाह भी है और हिंदुओं का ईश्वर भी है। तो यहाँ से अवधारणा बनती है उसकी सुलह कुल की।
2: 1580 में कुछ मुगल अहदेदारों ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और छोटे भाई मिर्जा हाकिम को बादशाह घोषित कर दिया। इस बगावत को कुछ उलेमाओं ने अपना समर्थन दिया। बहरहाल अकबर ने बगावत को शांत कर दिया, लेकिन अकबर रुका नहीं।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
10: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
13: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
14: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
12: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
14: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रूपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रूपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
15: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
16: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
14: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
17: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
14: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
12: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
18: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
12: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
19: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
12: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
20: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
12: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिन्दुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
21: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
0: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: एकेडमी जो है सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160002।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894 18744।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
12: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
5: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
5: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
15: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
15: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947064438 पे।
17: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
18: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
17: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
18: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
7: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा जिले के बरबीघा में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही आमस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री शेखपुरा को 53 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सामस स्थित विष्णु धाम के सौंदर्यीकरण की योजना के साथ अन्य योजना इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि मुख्यमंत्री पटना से यहां पहुंचते ही पहले सामस स्थित विष्णु धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सहयोग शिविर में शामिल होकर वहां मौजूद लोगों से सहयोग शिविर के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
0: मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों, निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में जटिलताएं दूर की जाएंगी। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को लाइसेंस निर्गत करने, अनुमति प्रदान करने और प्रक्रियाओं को सरल तथा आसान बनाने का निर्देश दिया है। श्री चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक उनके खाते में राशि भेजने को सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि संगठन पार्टी की शक्ति है और उसी के जरिए सरकार की उपलब्धियां और विचारधारा को जन जन तक ले जाना है। इसके तहत महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम को समाप्त कर दिया है। अब दुकान और प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर दुकानदारों को निबंधन नहीं कराना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के अनुसार अब नए लेबर कोड में 10 और इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकानदारों को निबंधन कराना होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमों का अनुपालन करते हुए सरकारी आवास खाली करना होगा। श्रीमती सिंह ने पटना में जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राबड़ी देवी वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए उन्हें भी नियमों का सम्मान करना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई प्रतिशोध और द्वेष की भावना से नहीं की जा रही है। राजद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा कारणों से आवास दिया गया है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यदि द्वेषपूर्ण राजनीति करेगी तो राजद के सभी नेता सरकारी आवास और सुरक्षा वापस कर देंगे। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना के बिहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
3: सिर्फ जरदालू आम ही नहीं, मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं। और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स है हमारे उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। इरेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है, और भी इरेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज्यादा सुगम बनाया।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। लोक भवन ने राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित है। लोक भवन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: प्रदेश में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि आगामी मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने का निर्देश भी दिया है। निगरानी विभाग ने पूर्णिया के नगर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए राशि की मांग करने का आरोप है। मुंगेर की एक अदालत ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2010 के इस मामले में मुख्य अभियुक्त की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में आज से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। अररिया जिले के प्रभारी सचिव मोहम्मद सुहेल ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक महिला के साथ उत्पीड़न मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के फुलहर से प्राप्त अभिलेख युक्त बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा और पुरावशेष को मिथिला ललित संग्रहालय को सुपुर्द कर दिया गया है। गोवा में संपन्न राष्ट्रीय महिला मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में भोजपुर की अंजू कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीता। अंजू ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और रिले स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पटना में 6 से 10 जून तक बिहार राज्य सब जूनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, CBSE पुनर्मूल्यांकन साइट फिर ठप हुई, परेशान रहे विद्यार्थी। दैनिक जागरण लिखता है, करोड़ों की सरकारी दवाओं पर नकली रैपर लगा, बांग्लादेश में तस्करी। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और गया समेत कई जिलों के अस्पतालों से आती थी दवाएं। दैनिक भास्कर ने बिहार में काली कमाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, काली कमाई से बिहार के अफसरों की प्रॉपर्टी खरीद का खुलासा। मामाजी के जरिए बागडोगरा पहुंच रहा है बिहार के अफसरों का कैश। प्रभात खबर JEE एडवांस परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, गुवाहाटी जोन के सफल छात्रों में 45% बिहार के। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हम थागर से बोलते हैं, दामाजी प्रसाद
1: जी, क्या हाल है आपका?
2: हमारा हाल ठीक है, अपना हाल बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
2: दिन तक गुमसुम हुआ है
1: जी।
2: आप गाना सुनवाइए।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: मैं उठा ले जाऊंगा तुझे डोली में, देखते रह जाएगी तुम्हारी सखिया।
1: अच्छा, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
2: जितना लोग सुनता सब कोई अदालत चौधरी बारे हमारे सार लोग यहाँ नियो बारे हम बने बहुत लोग बा।
1: ठीक है,
2: नमस्ते।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: सलाम मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल है
1: मैम? ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है,
1: बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: ठीक है, फिर अपना नाम बताएं।
1: काफी नाम।
0: और आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: सिवान जिला पड़ता है लकड़ीदगा।
0: अच्छा, क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं मैम, आपसे बात हो।
0: तो फिर बताइए, क्या फरमाइश है आपकी? कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: जी मैम, बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, ऐसा ही कोई हिंदी सॉन्ग है।
0: जी
1: जी वही वाला बता दीजिए।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो जो सुनते हैं।
0: ओके।
1: और अलीसाबा को और नासिम को सब सुनती है, सब मेरी सिस्टर।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम कॉल उठाने के लिए।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: Now pick your phone up.
16: Hello?
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello?
15: Now pick your phone up.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो,
19: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: गुड आफ्टरनून मैम।
19: गुड आफ्टरनून, आपका क्या नाम है?
18: मेरा अलिफा नाम है।
19: क्या हाल है?
18: ठीक है, अपना बताइए।
19: मेरा भी ठीक है। कहाँ से हैं आप?
18: मैं सिवान जिले से, एक छोटे से गांव से बोल रही हूँ, लकड़ी दरगाह।
19: अच्छा, क्या कर रही हैं?
18: मैं अभी पढ़ाई कर रही थी।
19: किस क्लास में पढ़ती हैं?
18: मैं 10th में।
19: तो क्या फरमाइश है आपकी?
18: यस, आप कैसी हैं मैम?
19: मैं ठीक हूँ। अपना फरमाइश बता दीजिए।
18: मेरा फरमाइश है, तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया।
16: आगे भी गाइए थोड़ा सा।
18: मुझको भावे गलिया तेरी गलिया, ऐसे गाना है ना?
16: बहुत अच्छा गा लेती हैं।
18: प्रिया मैम,
16: ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
18: मेरी सिस्टर है ना,

0: हेलो, बहुत
1: हेलो
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, शुक्रिया। प्रणाम
0: प्रणाम, क्या नाम है आपका?
1: जी। नास्रीन नाम जी।
0: क्या हाल है? मेरा
1: ठीक है, आप अपने बताइए मैम,
0: भी ठीक है।
1: क्या हो रहा है?
0: अभी तो आपसे बात हो रहा है, आप कहाँ से हैं?
1: छतरपुर
0: जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश है, मैंने तेरा नाम दिल, फिर भी यही हो रहा है ना।
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746 64।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
7: और 90-97-61-60-02।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97-644।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो, गुड मॉर्निंग।
12: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिन्यू के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। हेलो,
13: बोलिए मैम।
12: क्या नाम है आपका?
13: मेरा नाम है सोनम।
12: और कहाँ से हैं आप?
13: गोपालगंज से।
12: क्या हाल है आपका?
13: ठीक है, अपना बताइए।
12: मेरा भी बढ़िया है। फिर बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
13: ये फरमाइश है,

0: बहुत अच्छा गा लेती हैं आप।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, कितना अच्छा मैंने तारीफ कर दी।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे जीजू हैं, राजू जीजू, साहेब जीजू, इमरान जीजू, लड्डू जीजू, और मेरी अप्पी है सबो अप्पी, सबनम अप्पी, फलक अप्पी, गुलशन अप्पी, नासिन अप्पी, साबिन अप्पी, सीफा, फजर, आयशा, सनाया, मेरी अम्मी, अब्बू,
0: बताइए,
1: मेरे भाईजान हैं और मेरी खाला की लड़की है लोग सब।
0: अच्छा ठीक है फिर,
1: और आपको भी सुनाना चाहते हैं।
0: धन्यवाद,
1: आवाज बहुत अच्छा है मैम।
0: थैंक यू, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो। मेरा
0: बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। क्या नाम है आपका? क्या
1: नाम आयशा है।
0: हाल है? कहाँ
1: ठीक है, अपना बताइए। मैं
0: से हैं आप?
1: बोल रही हूँ मुजफ्फरपुर से। अभी
0: क्या हो रहा है अभी? तो
1: कुछ नहीं, आपसे बात हो रहा है। मेरी
0: क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है, बंजारे को घर।
0: अच्छा, ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: मेरे रेडियो रिमझिम के सभी सदस्य को और मेरे जीजू लोग को, जैसे कि सफी अहमद जीजू, मैनुद्दीन जीजू, इमरान जीजू, फलक अपी, शबनम अपी, चाहत अपी, साबिन अपी, मासूम अपी, आयशा, फजर, सनाया, इनाया, स्माइल, इस्माइल भाईजान को, और सनाया, इनाया, सैम,
0: जी
1: अबास, हमजू, हमजू को भी, हमाद को भी, और नाजिया अपी, और साबिना अपी, नासरीन अपी, गुलशन अपी।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
9: Hello. जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: रेडियो रेंज में नमस्कार।
10: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज में कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: हमको चांद का पार्क गाना सुनना है।
10: जी, गाना आपको सुनाया जाएगा, पहले अपना नाम बता दें।
11: संजय सा।
10: और
11: ग्राम फुली डुमर, जिला बांका, बिहार से बोल रहे हैं।
10: कैसे हैं आप?
11: ठीक है।
10: क्या हो रहा है अभी?
11: अभी तो यही दुकान पर है।
10: अच्छा,
11: दुकाने चलाते हैं।
10: फिर बताइए।
11: आपका जो है सोच सुनते हैं हम बराबर।
10: अच्छा जी।
11: ट्राई करते करते तब अभी लगा।
10: लगता है थोड़ा वक्त।
11: हाँ।
10: कॉल आते रहते हैं ना इसीलिए।
11: हाँ, चांद के पार चलो।
10: जी, और ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
11: आपको और पूरे श्रोतागण को।
10: बिल्कुल, गाना सुना दिया जाएगा। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
11: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
1: नमस्कार, क्या हाल है?
0: कुछ नहीं मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, तो शो तो स्टार्ट हो गया मैम, तो आज एक फरवाई था फिल्म है कुछ कुछ होता है और गाने के बोल है तुझे याद न मेरी आई।
1: अच्छा।
0: यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
1: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18-744।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो,
15: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: जी मैम नमस्ते, मैं कुमार बात कर रहा हूँ मैम, जामनगर गुजरात।
15: जी क्या हाल है आपका?
16: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे रेडियो रंजन सुनते हुए मैम।
15: जी फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
16: जी आज सुनवा दीजिएगा फिल्म दिल वाले का, जीता था जिसके लिए, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दोस्त लोग सुनते हैं, कभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। आप कौन सा मैम बात कर रहे हैं?
15: भारती बोल रहे हैं।
16: जी मैम
15: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
16: ओके मैम, बाय।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: हेलो
0: के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: हेलो मैम, नमस्कार। गुड
0: नमस्कार,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून।
1: बोलिए, कैसा है?
0: ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा नाम श्री भगवान सिंह है।
0: बोलिए।
1: मैं दोहा कटर से बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: मेरा आज वेडिंग एनिवर्सरी है। जो एक गाना सुना है तो आपका पसंद था, अच्छा गाना सुना दिए।
0: अभी बता दें आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: हम गाना सुनना चाहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी पर, कोई अच्छा गाना जैसे शादी मुबारक हो।
0: जी,
1: वह गाना भी तैयार।
0: गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ, हमारे सुनने वाले हैं हमारे पास काफी प्रसाद, नागराज, चंदन भाई, दिनेश कुमार, सचिन कुमार, कमल सिंह, शंकु अमीषा और पूरे जो रिम के दर्शक हैं उन सब के लिए। ओके
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello, hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: गाना सुनने के बाद थानेदार फिल्म के गाना सुन बात हम तो महेश शर्मा कालीकुम से बोला था।
14: अच्छा,
15: तो सब कुशल मंगल कही,
14: सब बढ़िया बा, अपन बताएं।
15: ठीक है बा, हमसे तो

0: पहाड़ इलाका में रहली गर्मी कम बा।
1: नहीं ये तो बहुत
0: अब
1: ज्यादा गर्मी बा।
0: हाँ बिहार में तो गर्मी रहबे करेला। हमनी के 6 महीना पर जा ले तो अथी पढ़ाई ना सकल, कितना भी फैन चले पंखा चले ना तभी भी मच्छर मारने के नाम ना, इतना गर्मी होने जी। हाँ हमनी के यहाँ पर बहन तो एक कमर के जार रहेला। हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: ये जो तो मतलब भयंकर अभी गर्मी पड़ता है।
0: हाँ पर 25-26 साल से रहा पानी हुआ पर मन ना गई
1: बढ़िया
0: बा।
1: पर हुआ ठंडी में पानी अच्छा हुआ।
0: हाँ, गांव में जाने से मन ना करे, इतना गर्मी से परेशान होकर जाले। हाँ 2 दिन 4 दिन रहले भाग जाले। और हमें तो समस्तीपुर में बा, मुजफ्फरपुर के बगल में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ। तब तो सुना दे मैडम प्रणाम।
1: ठीक बा गाना प्ले करता नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करे खातिर। और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: सत श्रीकाल भैन जी।
0: क्या नाम है आपका?
1: बूटा सिंह मान भैने नत्त रोड तलमंडी साहब डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से।
0: ओके, क्या हाल है
1: हाँ जी,
0: आपका?
1: बहुत बढ़िया जी, तुम दसो ठीक हो? मैनु अज गाना सुना दो जी, चंगम फिल्म का गाना है जी, डबली वाले डबली।
0: जी, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: अपने दोस्त है महेंद्र भट्टी मंडी कलां तो, जगदीश राय गर्ग मानसा तो, जगजीत मट्टू मौड़ कलां तो, मलकीत घड़ी साज गोन्याने तो, सतीत मगलानी मलोर तो, ये दोस्त अपने।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भेने, धन्यवाद।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
11: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
12: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
13: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
12: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
13: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
12: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
13: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
12: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
13: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
12: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
13: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
14: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
15: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
13: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
15: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
13: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
13: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
16: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
17: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
18: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
19: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
20: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
21: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
22: जी नमस्ते, बालवीर सुंदर पुर।
21: जी नमस्कार, क्या हो रहा है फिर?
22: अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना गर्मी है ना।
21: गर्मी तो बढ़ते जा रही है, अभी गर्मी और बढ़ेगी।
22: जी जी,
21: फिर गर्मी में बच के रहे, ख्याल रखे अपना।
22: जी जी, अभी पेड़ के नीचे है।
21: अच्छा, फिर बताएं क्या गाना सुनना चाहते हैं?
22: फरमाइश सही है जीता का, जिसके लिए दिलवाला फिल्म का।
21: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहेंगे?
22: अमन अशीष।
21: अच्छा ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ।
22: नमस्ते,
21: कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
22: नमस्ते।
21: नमस्कार।

0: हेलो। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। थोड़ा तेज बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
1: गाना सुनना है
0: जी, बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना कोई भी सुनाती है।
0: ये फरमाइश तो है, तो आप खुद की पसंद से बता दें।
1: कोई भी गाना, दिल जारे मूवी के गाना।
0: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग इसका?
1: कोई भी गाना सुना, दिल जारे।
0: जी, फिर गाना और ये किसको सुनाना चाहेंगे आप? अच्छा, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225667 या 97714861।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99393965930।
7: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमछिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सकें आपको। ऐसा ना हो कि आप नए गाने का फरमाइश कर दें और आप इंतज़ार करते रह जाए और हम पुराने गाने के इंतज़ार में आपकी फरमाइश पूरी ना कर पाए। तो आप जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की प्रयास की जाती है और हम भी प्रयास करेंगे अपने कार्यक्रम में। और अभी मैसेज हमारे पास तो कोई रिसीव नहीं हुए, तो अपने तरफ से एक प्यारे से गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं तब तक जब तक मैसेज नहीं आ जाता है मेरे पास। तो आप सभी इंजॉय करें इस गाने के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

फ्रीडम जिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और बैक टू बैक दो गाने सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं अंश कुमार गोपालगंज से और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल देते हैं चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। डेडिकेट करते हैं अंशु निर्मला और अनुजा, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छम 94.4 FM पे।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी

0: वह खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160002।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे हर शुक्रवार को है फ्री OPD तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
6: अरे ए बबुओ परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
15: एक कहानी।
16: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे और सोशल एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मुझे सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग का बोल है बन के पतोहिया सुनिए मोरी आमा। सुनाना चाहती हूँ सबसे पहले आपको एंड शबीना जी, रोशनी जी, सोनी जी, निशा भारती और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को। और इस मैसेज को करती हैं शिल्पी बिदबर्मा से। और आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए, आगे मैसेज में लिखा गया है कि हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और गाना सुनना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं अनिल जी छोटपुर से। तो अनिल जी आपके भी मैसेज हम शामिल करेंगे। अभी मैसेज हमारे पास ठीक से रिसीव नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी डिवाइस में दिक्कत आ गई है जिसके कारण फिलहाल हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी भोजपुरी अंदाज में इस प्यारे से सॉन्ग को।

4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है निशा जी के तरफ से, और गाने के फरमाइश करती हैं तारों के शहर में। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आपके गाने एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे। गाने तो नए हैं लेकिन मैसेज रिसीव नहीं होने के कारण आपकी मैसेज हमें रिसीव हुई है, तो आपके गाने हम सुना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आगे से गाने की जब भी फरमाइश करिएगा तो आप पुराने गाने का फरमाइश करिएगा, नहीं तो आगे से गाने को प्ले नहीं किया जाएगा। आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अभी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी रेडियो रेमिच 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय जो है समाप्ति की हो चुकी है, तो अंतिम गाने प्ले करेंगे और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और आगे मैसेज रिसीव हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। और
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। बारह बज के 2 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अगर आप भी चुनना चाहते हैं शो में चुनने के लिए माध्यम है आपके पास व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 9857288291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। और अगर व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं या फिर वॉइस भेज रहे हैं तो अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 7277166696 पे। जो भी लिसनर हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं सिर्फ उनके लिए कॉल का भी माध्यम है और नंबर है 7277166696 पे। कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और जो भी हमारे सभी लिसनर है और सभी लिसनर से मेरा ये अनुरोध है कि आप जब भी गाने की फरमाइश कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश किया करिए, कोई भी ऐसा गाना की फरमाइश ना किया करिए जिससे सुन के लोगों को कोई भी परेशानी हो या फिर उन्हें रेडियो बंद करना पड़े। तो आप जब भी गाने की फरमाइश किया करिए, गाने सोच समझ के फरमाइश किया करिए। बेशक फरमाइश आपकी है लेकिन सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपकी फरमाइश सही होना चाहिए। और बातें बहुत हुई बिना देरी के आज के शो की आगाज़ करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ। तब तक आप सभी मैसेज करिए और जब तक मैसेज पहुंचती है आप सभी की मेरे पास, तब तक एंजॉय करते हैं हम एक बढ़िया सा गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। फिलहाल एंजॉय करिए इस गाने को।

90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी कुमार सानू की आवाज़ में, काफ़ी बढ़िया गाना। और यहाँ मैसेज भी काफ़ी सारे पहुँच चुके हैं। व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और नईम जी जुड़ चुके हैं जाम तारा से, बहुत बहुत स्वागत है। दीनानाथ यादव हैं क्वेत से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, मुस्तफ़ा है सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लाल सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है अभिनंदन टेलर से, सभी लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभांश चौरसिया हैं प्रेमनगर लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। गाने की फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि लिंक भेज दिया हूँ, गाना प्ले कर दीजिएगा और बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और लाल बाबू सिंह है आंध्र प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गाने की फरमाइश है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, वारिस खान जुड़ चुके हैं दुआ कतर से, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सोनी जी। और आगे कुछ लिखते हैं,

और आगे लिखते हैं कि किसने कहा हमने आपकी याद नहीं आती, किसने कहा हमें आपकी याद नहीं आती, आपको ना सोचे ऐसी कोई रात नहीं होती। वक्त बदल जाता है, आदतें नहीं जाती, आप खास हो सबसे, ये बात सबसे कहीं नहीं जाती। क्या बात है वारिस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि देखिए सोनी मैम जी नमस्कार आपको, और कैसी हैं बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि ओपनिंग गाना ऐसा बजाए कि दिल छू गया। और आगे यहाँ नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है आंध्र प्रदेश से लाल बाबू सिंह जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले करते हैं, और आप सभी एंजॉय करिए, हम सभी एंजॉय करते हैं लाल बाबू जी की फरमाइश पे, इनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची थी आंध्र प्रदेश से लाल बाबू सिंह जी की और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ अगली मैसेज है और लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सोनी जी, लालगंज वैशाली रोड बजाजी रोड वैशाली से जुड़े हुए हैं MD नौशाद जी और गाना सुनना चाहते हैं अगर आसमां तक मेरे यहाँ जाते तो। नौशाद जी, हम आपको बता दें कि आपके गाने की फरमाइश जो है कल ही पूरा किए थे और अगली फरमाइश अब एक सप्ताह बाद पूरा करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी ये गाना समझ में नहीं आ रहा है आपको, हमने तो आपको आ रहा है कि नहीं, हमें तो नहीं आ रहा है, तो हमें भी नहीं आया, कुछ कुछ आया पर पूरा तो नहीं आया। और बढ़िया आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि पप्पू पार्टी से रात को देर से घर गया, अगले दिन दोस्तों ने पूछा बीवी ने कुछ कहा तो नहीं, पप्पू नहीं यार कुछ खास नहीं, आगे के ये दो दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ी। और यहाँ एक और मैसेज है, MD नौशाद जी है, नौशाद है मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दीजिए और मैं अपना लिंक शेयर नहीं करूँगा। ओहो, गाना सुनना भी है और लिंक शेयर नहीं करूँगा, लिख रहे हैं कि बहुत टाइम लगाते हैं गाना बजाने के लिए इसलिए अपने दोस्तों के गाना सुनाकर सुनूंगा। तो बिल्कुल अगर आपको जब भी गाने सुनने होंगे अपने गाने की फरमाइश जो है भेज दीजिएगा, हम प्ले करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो दीदी नमस्कार, और शिवांश चौरसिया है प्रेमनगर वस्त्रा लालगंज मिर्जापुर से और लिख रहे हैं कि दीदी मुझे भी गाना सुनना है तेरे दर पर सनम हम चले आए। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचे, अपने गाने को इंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: ठक ठक
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527888291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 72776 पे। और बढ़िया आगे यहाँ इंस्टाग्राम मैसेज की तरफ, और यहाँ मैसेज है मनीष कनौजिया जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि तुम पास नहीं हो तो तुम्हारी याद सताती है, तुम पास नहीं हो तो तुम्हारी याद सताती है, तुम मानो या ना मानो मगर हर रोज़ तुम्हारी याद सताती है। और मैसेज के साथ हैं वारिस खान जी कतर से, बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी, और जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मैडम जी प्रणाम। और नगेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। फरमाइश है, लिख रहे हैं कि पकौली वदो ब्लॉक फ्लोरिया से जुड़ा हूँ, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम भी सुनाता नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी नगेंद्र जी। और मनीरिया हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को, और कह दीजिएगा बिल्कुल कह दिए हैं। महमूद आलम जुड़े हुए हैं केवला कटियार से, बहुत बहुत स्वागत महमूद जी आपका भी। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी आज लगा दीजिए। हेलो सोनी जी नमस्कार, राधे राधे। और आगे लिखते हैं कि छोड़ दिया हमने उसका शहर, उनकी गलियों में जाना जहाँ अपने ही सांसों पर पहरा हो, वहाँ ज़िंदगी बिताना मुश्किल है। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत कुमार जी प्रेमनगर राजा लालगंज मिर्जापुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ संजय यादव है दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं क्या हाल है मैम, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम जब गाना समझ नहीं आता तो गाना कैसे चला दिए, यही तो टैलेंट है आपका। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ राकेश भारती जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मैम हाजिर लगा दीजिए, हमारा भी। और दोस्त है मंगरू यादव, बलराम यादव और साले साहब हरेंद्र जी, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: पंडित जी हमको गाना सुनना है, कहाँ गई लड़कियाँ हो तुम हमके बताओ, आंगना खोज रहे हैं दुआरा खोज रहे हैं, कौन लड़कियाँ हो तुम हमके बता दो, ये गाना सुनना है
0: जी। और गाना सुनवाना भी है,
1: कहाँ गई लड़कियाँ हो तुम हमके बता दो
0: जी। आप शो में पहली बार कॉल किए हैं। हेलो, और नाम क्या बताएं आप?
1: पंडित जी
0: तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, ठीक है।
1: थावे से बोलते हैं
0: जी जी, अपना गाना एंजॉय करिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी कॉल के माध्यम से, और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है यहाँ गोपाल रॉय जुड़ चुके हैं फरमाइश के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं, हेलो हाय सोनी मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और मैं भी बहुत दिनों बाद आपके शो में जुड़ गई हूँ, और मेरा भी आज ही लगा दीजिए। सबीना खातून है फ्रॉम दुलदुलिया से, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे लिखती हैं कि गर्मी आ गई है दोस्तों, थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि गर्मी पूरी कोशिश करने वाली है हमारी शक्लें हमारे आधार कार्ड से मिलाने की। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, प्रमुख जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारे उद्घोषक महोदय जी एंड एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे? और मैसेज करने वाले हैं नाम तो मेंशन ही नहीं किया आपने, नाम ज़रूर बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी सारे मैसेज हैं, लिखे हैं कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपका भी गाना बजा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ में और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम का। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास जो पहुंचा हुआ है वो है नौशाद मोबाइल बिक्रमगंज रोहतास से, तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे इनके पसंद की गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और आप सभी से मैं शुरू करते समय ही बोली थी कि गाना कोई भी फरमाइश करिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के करिए कि गाना बेशक आपकी पसंद हो लेकिन सुनने वाले आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। और आप लोग फिर भी इतना कहने के बाद भी कोई भी गाना उठा के भेज देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ विमल कुमारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्ते, कैसी हैं? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और यहाँ धनेश मिश्रा दिल्ली से लिख रहे हैं कि सोनी जी कल आप बोली थी कि आपका सबका एक सप्ताह पूरा हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ है, तो आप जब बोलिएगा तभी मैं अपनी फरमाइश करूँगा। तो भैया मैं इतनी सीरियस बात लेने के लिए नहीं बोली थी कि मेरा बात एकदम से ऐसे दिल पे ले लीजिए कि एक सप्ताह नहीं हुआ। आपने गाने की फरमाइश दे सकते हैं बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी फरमाइश प्ले करने की। फिलहाल यहाँ बढ़ूँगी आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है।
1: हेलो सनी जी, कैसे हैं आप? आपसे तो बात नहीं हो रहा है ना, आपका प्रोग्राम चेंज हुआ है कि हम सोचे हैं, और आप तो फोन कॉल में तो नहीं रहते हैं ना, दूसरे कोई रहता है, और बहुत दिन से बात ही नहीं हो रहा है, कभी कभी फोन भी लगता है नहीं लगता है। और कैसे हैं आप? ठीक है ना? अच्छा, तो आज एक तो गाना सुना दीजिएगा, जवाब हम देंगे मूवी का, जब जब मियाँ बीवी से टकरार होती है, ये गाना सुना दीजिएगा। और ये गाना को सबको डेडिकेट करता हूँ, रिमझिम परिवार को और आपको भी, सभी को डेडिकेट करता हूँ, तो गाना तो सुना दीजिएगा।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी हमारे पास दार्जिलिंग से गोपाल रॉय जी की, और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं? और श्याम बहादुर जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, तो बिल्कुल लग चुकी है। और यहाँ जहूर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं, इस दीवाने की शिकवा तुमसे नहीं, मेरे खुद से क्या ज़रूरत थी इतना तुम्हें खूबसूरत बनाने की। क्या बात है। और इस मैसेज के साथ हैं वारिश खान जी कतर से, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और यहाँ अगला फरमाइश है हमारे पास रागनी जी का, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ अगली फरमाइश पहुँच चुका है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो,
1: नमस्ते दी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम बढ़िया है जी, नाम बता दीजिए।
1: नेहा कुमारी।
0: कहाँ से नेहा जी?
1: सिरिसिया बाबू टोला से।
0: सिरिसिया बाबू टोला, अच्छा
1: हाँ।
0: जी तो क्या कर रही थी अभी?
1: कुछ नहीं, गाना सुन रहे हैं, सोचे फोन लगा ले तो लग गया।
0: चलिए तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: खाना हो गया?
0: हाँ खाना तो हो गया है, लंच बाकी है।
1: मेरी मम्मी बात करेगी, कर लीजिए ना।
0: जी बिल्कुल करवाइए।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: क्या समाचार?
0: बिल्कुल बढ़िया, रुआ बताएं।
1: अमनियों के बढ़िया बा
0: जी,
1: खाना खा ले ले बनी?
0: हाँ जी, सुबेर के तो हो गए बटे, दोपहर के बाकी बा। हाँ
1: अच्छा
0: जी, तो नाम बता दिया अपन।
1: हाँ नाम बता दे दी।
0: अच्छा अच्छा, तो आज कौन गाना सुनवा दी रुआ के?
1: सुनवा दीजिए चांदनी है दुपो तो कागज नहीं गोल बट ये लगाना सुना दीजिए।
0: अच्छा पवन सिंह के?
1: हाँ।
0: और सुनवाए के भी बा?
1: सभी श्रोताओं को और आपको।
0: चलिए तो प्ले कर दिले बानी गाना।
1: ठीक है
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के लिए।
1: थैंक यू दी।
0: वेलकम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-648-652 पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफी सारे मैसेज है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मनीष रजाक जी हैं, लिख रहे हैं कि व्हाट्सएप का ही गाना बजाइएगा, इंस्टाग्राम का गाना नहीं बजाइएगा क्या सोनी जी? तो इंस्टाग्राम का भी गाना बजा रहे हैं, लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वही लोग व्हाट्सएप पे भी पहुँचे हुए हैं, तो फरमाइश तो व्हाट्सएप पे ही आया है तो फिर इंस्टाग्राम से कैसे गाना बजाएं? इंस्टाग्राम पे भी फरमाइश पहुँचेगा तभी तो इंस्टा से मैसेज जो है शामिल करेंगे और गाना बजाएंगे। बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है, लिख रहे हैं कि वक्त का इशारा समझिए, नदी तब तक बहती है जब तक रास्ता मिलता है, जिस दिन रास्ता पत्थरों से भर जाता है वो खुद ही मोड़ लेती है, उससे शिकायत नहीं होती ना ही शोर मचाती है। इंसान इससे भी कुछ ऐसे होते हैं जब सामने वाला जवाब देना छोड़ दे तो सुनना छोड़ दे, आपकी मौजूदगी से बचने लगे तो समझ जाइए कि बहाना बदल चुका है, तब खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। सफाई देना भी बेकार होता है, सबसे बेहतर यही है कि इज्जत के साथ पीछे हट जाए, क्योंकि जहाँ ठहरना पड़ता है वहाँ रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। और इस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुटुमाली पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कोई नहीं मैम, मैं दोस्तों की फरमाइश सुनकर सबर कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ हमारी कानों तक आ रही है इतना ही बहुत है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अपनी फरमाइश भी ज़रूर भेजिए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल दीवाना न जाने कब हो गया गाने की फरमाइश के साथ है जहूर आलम अंसारी जी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा बॉस बड़ा ही निराला है, बात बात पर भाषण वाला है, काम करो तो कम बताता, रुक जाओ तो शोर मचाता, सुबह से शाम तक बोलता जाए, हर मीटिंग में ज्ञान सुनाए, हम बस सर जी कहते रहते, दिल में हंसते चुपचाप सहते, फिर भी उससे एक बात सीखी, मेहनत की राह कभी ना फीकी, खड़ो सही पर बात ये खास, हर दिन कुछ सिखा जाता बॉस, अच्छा लगे। और लिख रहे हैं कि अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा वरना मुंह पे फेंक दीजिएगा, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया लाइन। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मिथुन शर्मा जी जुड़ चुके हैं उत्तर टोला से, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं गाना सुनना चाहते हैं, लिंक भेज दिए हैं तभी, अभी तक आपका लिंक पहुँचा नहीं है, गाना सुनना है तो लिंक भेजिए या फिर गाने की फरमाइश ज़रूर बताइए। और यहाँ और एक यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि आपको देखकर हमको ऐसा लगा, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित कुशवाहा जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि सितारों से भरी रातें पसंद है, दूर से सुनी उसकी बातें पसंद है, तारीफ के काबिल हैं उनकी जुल्फे, फिर भी मुझे ज़्यादा उसकी आँखें पसंद है। और इस मैसेज के साथ है सबीना खातून जी दुलुड़िया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है हमारे पास।
1: सलाम अलैकुम, नमस्कार सोनी मैम, हम बहुत देर से जुड़ रहे हैं कुवैत से जहूर आलम, और रहने वाला हूँ गोपालगंज सदुमा के, वो गाना सुनवा दीजिएगा दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, ये गाना शायद दागदी फैर का है, गाना सुनाने के लिए और भी हमारे दोस्त सुनने चाहते हैं और भी रिमझिम परिवार को सुनाने को चाहता हूँ।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफ़ी शानदार गाना चल रहा था और गाने की फरमाइश करने वाले थे जहूर आलम अंसारी जी और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी गाना सुनाने के लिए और बजाने के लिए और गाने में आप गुनगुनाएं उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, हवा बनकर आपकी सांसों में समा जाएंगे, धड़कन बनके आपके दिल में उतर जाएंगे, जरा महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहकर भी पास नजर आएंगे। हाँ, आगे लिखते हैं कि आप किसी सिंगर से कम नहीं हैं, ये तो टैलेंट है, ऐसे ही गाते रहिए। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और इतना तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी सारा मैसेज है, और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, संजय यादव है दुबई से। और यहाँ डॉक्टर अमोद किशाह है, लिख रहे हैं कि बहुत दिन बाद फरमाइश भेजा, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुस्कुराने की आदत भी कितनी कमाल होती है, मुस्कुराने की आदत भी कितनी कमाल होती है, ये वो दवा है जो हर दर्द का इलाज करती है। गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी थोड़ा लेट हूँ बट जुड़ गया हूँ शो से। और अनिल जी है छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हम किसी से खुशियाँ मांगेंगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियाँ मांगेंगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। और मैसेज करने वाले हैं वारिस खान जी, और आगे लिखते हैं कि नीलामी लिखते हैं जिंदगी की सफर में, नीलामी लिखते हैं जिंदगी की सफर में, साथ हो तुम्हारा और दिल चीर कर दिखाऊंगा और नाम हो तुम्हारा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ और भी मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और गाना सुनना चाहता हूँ, लिंक भेज दिया हूँ। रोहित है देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ मैसेज है आगे और भी, लेकिन शामिल करेंगे उससे पहले अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है रागनी जी का गोपालगंज से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है, और गाना है इनकी तरफ से अप टू यू, तो एंजॉय करते हैं रागनी जी की फरमाइश पे ये गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856587।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम पे मनीष कनौजिया जी हैं, इनको सुनना है गाना, तो बिल्कुल आपकी आने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी काफ़ी सारे मैसेज है। और यहाँ अगला फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, मिथुन शर्मा है उत्तर टोला से और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचती है, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी आसमानी चौक से मिथुन शर्मा जी की। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, वॉइस मैसेज है और नाम मेंशन नहीं है। उत्तराखंड नैनीताल से मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम जरूर बताइए कि आप कौन है और कहां से गाने की फरमाइश है, तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे, लेकिन अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। जी क्या हाल चाल बा रामा जी?
1: हाल चाल ठीक बा, घाम बहुत तेज बा।
0: घाम तो बढ़ ले बा।
1: गाना सुनाए
0: जी।
1: मोहवा से बोलो कनखिया ना मारो।
0: और किकरा आवाज में गाना भाई?
1: बापी तो हम ना पकड़ ले जी, तो सब हो जैसे आवाज निकलेला।
0: अच्छा पुराना गाना हटे हो?
1: हाँ।
0: चलिए ठीक बा, तो गाना सुनवाए की भी बात होते हैं।
1: डॉक्टर साहब बने, हम बने, रवा बने, जितना रेडियो सुना सब कोई बाहर मैसेज कर रहा मैन मजा से हूँ बा
0: जी। लगी नहीं छूटे रामा के गाना का?
1: हाँ हाँ
0: हाँ। चलिए तो गाना प्ले कर दिले बने।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।
4: शादी

0: सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट। कॉल करें 85070-32042 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो उमा शंकर जी है लिख रहे हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है और आज मुझे भी मेरा गाना सुनवा दीजिए उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से। जी हाँ बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, अंकुर वोरे से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, आपका भी फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे गाना सुनवाने के लिए धन्यवाद। मिथुन शर्मा जी हैं और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी को, और इनको सुनना है गाना कि आपको देख कर मुझे ऐसा लगा। तो चलिए प्ले कर दिए आपके गाने की फरमाइश को, इन्जॉय करिए अपने गाने को और आप सभी भी सुनिए अमोद कुशवाहा जी की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, काफी बढ़िया गाने की फरमाइश किए थे डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी छपरा से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए। लेकिन गाना में तो कहा जा रहा था कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगा, सारी जहाँ की खुशी मिल गई। लेकिन आप सभी बताइए कि आप सभी को हमको देख के कैसा लगा, जरूर बताइए मैसेज करके, लेकिन कुछ ज़्यादा सच मत बोल दीजिएगा। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, और काफ़ी देर से परेशान है कॉल कर करके। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से, गाने की फरमाइश कौन सी है। हेलो, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: आप तो भी बहुत बहुत स्वागत आने के लिए।
0: जी जी,
1: कहाँ चली गए थी बगैर बताया, कितना परेशानी में डाल दे।
0: क्या करे, कुछ पर्सनल काम था, चले गए थे।
1: तो बोल कर जाना चाहिए ना, हम लोग कितना चिंता में थे।
0: अब अचानक से काम आन पड़ा तो क्या करे, गए तो दो दिन के छुट्टी में थे, लेकिन जाने के बाद कुछ और ही हो गया।
1: ऐसा ही गायब होता रहिए, हम लोग को परेशान करते रहिए। अब चली गई थी,
0: अब जाने के बाद मुझे रेडियो सुनने का भी समय नहीं था। कभी कभी शाम को सुन लेते थे, वो भी रात में जो चलता था हेलो माय चॉइस, वही सुन पाते थे। बाकी तो नहीं सुन पाते थे, 12 बजे से जो आता है ऐप पे।
1: वो भी तो बंद हो गया था, कोई भर्ती भी आई है तो कॉल कितना दिन ली, उसके बाद कितने दिन के बाद वो तब प्ले हो रहा है, नहीं तो आप ही का रिपीट हो रहा था।
0: अभी 2-4 बार से चल रहा है उन्हीं का।
1: हाँ वही तो, क्या मैं 3-4 रिकॉर्डिंग कराया है, कल उनसे बात किया तो बोली सोनी दीदी आ गई है, तो सुन के बहुत खुशी हुई।
0: जी जी,
1: है चलिए अब लगता है प्रोग्राम चलेगा।
0: मैं तो संडे से आ रही हूँ,
1: मैं उनसे पूछता भी था ताकि सभी मेहमान की नहीं जाए।
0: चलिए बढ़िया है, और सब बताइए घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं।
1: सब लोग अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं, गए जो काम के लिए गई थी वो हुआ कि नहीं।
0: वो तो हो ही गया,
1: फिर नहीं ना जाना है अभी।
0: नहीं अभी तो इतना जल्द तो नहीं जाना है, लेकिन समय क्या कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता
1: है,
0: उसका नहीं कुछ कह सकते। फिलहाल कोई प्लान नहीं है अभी।
1: हाँ ये तो है मैम, जरूरत है तो जाना ही पड़ता है इंसान।
0: जी तो अभी घर पे हैं कि बाहर चले गए हैं।
1: नहीं अभी तो मैम घर पे ही है, लड़ाई की वजह से मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है कि मैं जाऊँ।
0: चलिए उसी बहाने थोड़ा घर पे भी रहिए।
1: मेरा 2-2 बार बीजे का पैसा खराब हो गया, नुकसान हो। क्या करें,
0: तो गाना कौन सा सुनना है
1: आज? गाना सुनना है मैम हमको, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है।
0: फिलहाल मैं तो पहचान गई हूँ, पर लिसनर को नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम है अहमद अली, सरिया वार्ड नंबर 1 से। यही गाना सुनना है साजन मूवी से, और सुनाना है सबसे पहले तो आपको, और जो नई आई है मैम भारती जी उनको, और मेरी वाइफ अक्षरी को, और दिलीप भाई को, कमरान भाई को, जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: थैंक यू मैम, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किए।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: सब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं? 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए कई माध्यम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल है, आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए नंबर है 98 527 88 291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है। और यहाँ मैसेज है लिखते हैं कि आपके आने से रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को एक नया जिंदगी मिल गया है, हम रेडियो के दीवाने हैं, आपके जाने के बाद लगता था जैसे कुछ हमारा खो गया है, आप आई बाहर आ गई, उन दिनों रेडियो सुनने का मन नहीं करता था जब आप नहीं थी, हम श्रोताओं को आप जैसी आरजे मिलना बहुत मुश्किल है। और ये मैसेज करने वाले हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी, छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है लिखे हैं कि मैम मेरा सॉन्ग कब तक बजेगा, बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा। और यहाँ तूफानी कुमार जुड़ चुके हैं जादवपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिखे हैं कि गर्मी बहुत है, काफ़ी है मैडम जी, कोई उपाय बताइए। तो इतनी गर्मी में आप बस यही कर सकते हैं कि जितना हो सके आप धूप में बाहर निकलने से बचिए, 12 से 3 के बीच में आप धूप से निकलने से बचिए, बहुत ज़रूरी हो तो निकलिए, लेकिन निकलिए तो सर ढक के निकलिए और साथ में पानी लेकर ज़रूर बाहर जाइए। और जब भी बाहर से घर में आ रहे हैं तो आते ही पानी नहीं पीजिए, एकदम से ठंडा पानी नहीं पीजिए। बहुत लोगों को देखते हैं कि घर में आते ही फ्रिज से पानी निकाल के पूरा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करिए, नॉर्मल पानी पीजिए, क्योंकि बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं है, गर्मी है। और ये गर्मी ख़त्म होगा अगर बारिश होगा तो, लेकिन बारिश वो भी अच्छा से हो तभी थोड़ा बहुत होगा तो गर्मी और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, और भी मैसेज हैं, लिखते हैं कि अभी ठीक है और रिमझिम दी कैसी हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप अपना नाम बताइए, आप कौन हैं और कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी यही आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं इतने दिनों से बेकरार था और महीने दिन आपका छुट्टी होता तो मेरा क्या हाल होता, आपको पता है, मुझे तो नहीं पता है लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी, बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम पे, मनीष कनौजिया जी हैं और इनका सुनना है गाना कांच कसैली। और पवन सिंह की आवाज़ में तो चलिए आपकी जो गाने की फरमाइश है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: 104.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे कांच की सहेली एल्बम का गाना, और गाने की फरमाइश करने वाले थे मनीष कनौजिया जी, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मैसेज है, काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। वारिस खान है कतर से और लिख रहे हैं कि अर्ज किया है, किसी को चाहने का कोई बहाना नहीं होता, दिल लगाने से कोई दीवाना नहीं होता। आशिकी सीखनी है तो हमसे सीखो, मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ उन्हें पाना नहीं होता। क्या बात है। और आगे एक और यहाँ लाइन है इनकी तरफ से, और लिखते हैं कि इसके बाजार में हुस्न का मेला रह गया, इसके बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों फिर भी मगर दिल अकेला रह गया। दीवाना करने वाले ले गए हैं मोहब्बत खिताब, दिखावा करने वाले ले गए हैं मोहब्बत खिताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। और इस मैसेज के साथ है वारिस खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी सॉन्ग हो सकता है तो आज प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे, लेकिन गाना कौन सा है, कल वाला ही गाना है या फिर कोई और गाना, ज़रूर बताइए। और नाम आंसर नहीं है, फाजिलनगर कुशीनगर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ में अपना नाम ज़रूर बताइए आप कौन है। और दीपक यादव हैं मुंबई से जुड़े हुए हैं, और गाना कौन सा है ज़रूर कंफर्म करिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग चला दीजिए, वो इस मैसेज के साथ पहुँचे हुए हैं, और महेंद्र कपूर की आवाज़ पर गाना है, लेकिन आप अपना नाम भी बताइए। और यहाँ बैक में जाएंगे तो सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जब भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं गाने की फरमाइश कर रहे हैं तो अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए आप कौन है और कहाँ से। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है तूफान कुमार हैं जादवपुर से, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए प्ले करते हैं। वॉइस पहुँची हुई है, कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: नमस्ते मैडम, मैं तूफान कुमार घर जादवपुर, आज गाना सुना दीजिएगा मुझे। जेठ की दोपहर में गर्मी लगे हैं, रानी गर्मी लगे हैं, गाना सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी रेडियो में सुनते हैं सबको, कुछ दोस्त हैं पुलिस लाइन के सामने, राघव जी, शिवान के शंकर जी, रवि कुमार पांडे, इरफान भाई, जावेद भाई, शिव शंकर कुमार, सूरज कुमार, राकेश कुमार, रजनी रानी, हुसनिया, रेखा, नमिका जी, राजेश जी और विनोद जी, जो छूट गए सबको सुनाना चाहता हूँ। क्या कहता है रेडियो रिमझिम 94.4, सुनो दिल से, टेक केयर, बाय।

0: चला चला।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है, फरमाइश हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि उसने महबूब ही तो बदला है, फिर ताज्जुब कैसा। दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा तक बदल लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मैसेज करने वाले हैं तूफानी जी। और बात करें तो ज़िंदगी का दूसरा नाम ही बदलाव है। कभी लोग बदलते हैं और कभी हालात बदलते हैं, कभी हमारी उम्मीदें तो कभी कुछ, मगर जो लोग हर बदलाव में कुछ सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और बदलाव भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल के झरोखे में तुझी को बैठा के, दिल की झरोखों में तुझी को बैठा के याद की तेरी दुल्हन बना के रखूंगा मैं। दिल मैं दिल में पास हो मेरी जान उदास हो। और ये गाना का बोल है, यही गाना सुनना चाहते हैं। वारिस खान है, जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आपकी गाने की फरमाइश जो है वो दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिखे हैं कि सोनी दी आप भी बढ़िया सॉन्ग पे गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कांच का तोहफा ना देना कभी, कांच का तोहफा ना देना कभी, रूठ कर लोग तोड़ दिया करते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं उनसे प्यार मत करना, अक्सर अच्छे लोग ही दिल तोड़ दिया करते हैं। और ये मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दिल्ली से, और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और गाने की फरमाइश करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी। और इनको सुनना है गाना प्यार हमारा अमर रहेगा। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी। हम सभी इंजॉय करते हैं उमा शंकर जी की फरमाइश पे, इनके पसंद का गाना।

0: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे। गाने की फरमाइश करने वाले थे उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से, और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि उमाशंकर जी की पसंद काफ़ी लाजवाब है, और सगीर आलम अंसारी है तेजपुर आसाम से, और आपकी फरमाइश है, आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद पूरा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। 2:12 हो चुकी है स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी कुछ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग प्यार हमारा अमर रहेगा तू मेरा सारा जहां, और लिख रहे हैं एमडी महमूद जी हैं केरला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ आगे और भी एक मैसेज है लिख रहे हैं कि और अभी मैं मुंबई में आ चुका हूँ, अपने जॉब है और प्रोग्राम का मज़ा ले रहा हूँ मुंबई से। जी हाँ बिल्कुल, मुंबई से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक यादव जी हैं, और आपकी भी फरमाइश है, जो आपकी फरमाइश है वो भी हम दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। तो आप सभी कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 9993-63-65-930।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है, ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
10: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
9: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
10: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
9: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
10: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
9: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटीले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटीले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
9: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
12: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
9: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक

0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग।

0: पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम

0: 125R अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
0: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुकी है स्टूडियो घड़ी में, और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर रेडियो टिमचिम के इंस्टाग्राम पे जाइए, डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 72-77-16-65-96 पे, और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और मैसेज है लिखे, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और मुझे भी गाना सुनना है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो दिलीप राम जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज वैशाली से जुड़ चुके हैं नौशाद जी, सदाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक और यहाँ मैसेज है सचिन कुशवाहा जुड़ चुके हैं पुणे से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है प्रदीप जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हाय, और नाम मेंशन नहीं किया, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है तेजपुर असम से सगीर आलम अंसारी जी का, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपकी जो गाने की फरमाइश है वो प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: मैं सगीर आलम अंसारी तेजपुर असम से, गाना सुनना है, गाने का लिंक भेज दूँगा, और इस गाना को मैं सुनाना चाहता हूँ, यानी कि कुछ अपने श्रोता साथियों का नाम बोलना चाहूँगा, जितना याद है बोलूँगा, जैसे कि दिलीप राम, आज़ाद अंसारी, बरजू, गाटा शर्मा, भास्कर, रानी, इरफान, उत्तम सोनी, मुकेश, उमा शंकर, निर्मल भाई, शाहजहाँ, हाजरा, कामरान, बारजू, और जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं, सभी श्रोताओं को मैं ये गाना सुनाना चाहता हूँ। मैं सगीर आलम अंसारी तेजपुर असम से, गाना सुनाने की कष्ट करें, धन्यवाद।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और काफ़ी बढ़िया गाना सुन रहे थे, ओल्ड इज गोल्ड, और गाने की फरमाइश करने वाले थे सगीर आलम अंसारी जी तेजपुर असम से, और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिखने की, सुपर सॉन्ग, दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। और मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी जी चखसना से, बहुत बहुत स्वागत आपका सानिया जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बज रहा है मैम, संजय यादव है दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून वन सेकेंड ईयर, और आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे और भी मैसेज है लिख रहे हैं कि भैया भी आपसे याद नहीं गाना बजवा दिए, ओहो। और मैसेज करने वाले हैं धनीश मिश्रा जी दिल्ली से, और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं, सुनी जी नमस्कार, आपकी आवाज़ के लिए तरस गए थे सुनने के लिए, और हम भी अपने गांव से जुड़ा हूँ, अपनी हाल बताइए कैसी हैं, मालूम हुआ था कि आप कोलकाता गई हैं, तब से नहीं जुड़ा हूँ और आज जुड़े हैं, अभी आवाज़ आपकी सुनी तो, ओहो। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, जी हाँ कलकत्ता तो गए थे और अभी आ गए हैं आप सभी के बीच, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, स्वस्थ मस्त हूँ, और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, और शकीर आलम जी की तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कतर से वारिस खान जी की।

0: तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से, वॉइस पहुंचा हुआ है तो सुनते हैं।
1: मेरा भी गाना चला दीजिए मैम। ठीक है, दिल के झरों को मैं तुझको बैठा के, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना के रखूंगा मैं दिल के पास, मत लो मेरी जा उदास। गाना कबूल।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे अपना, काफ़ी सारे मैसेज है। और वारिस खान लिखते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है मैम, मैं ये बहुत ही सुनता हूँ और सुनकर सुकून मिलता है। चलिए बढ़िया बात है। और आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये गाना सुनना है, सुनवा

दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, नाम और पता जरूर मेंशन करिए। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक और मैसेज लिख रहे हैं कि ठोकर ना लगे मुझे, पत्थर नहीं हूँ मैं। ठोकर ना लगा मुझे, पत्थर नहीं हूँ मैं, हैरत से ना देख कोई मंजर नहीं हूँ मैं, तेरी नज़र में मेरी कदर कुछ भी नहीं, तेरी नज़र में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मगर उनसे पूछो जिन्हें हासिल नहीं हूँ मैं। दिलीप राम और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और आगे लिखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा तो मुझे रिक्वेस्ट भेजना चाहेगी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, फॉलो मी। और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे एक और मैसेज लिख रहे हैं कि शायर तो हम हैं, शायर तो हम हैं, शायरी बना देंगे आपको, शायरी में कैद कर लेंगे, कभी सुनोगे हमें अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ को हम गज़ल बना देंगे। और इस मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा दिल्ली से। और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी हैं। जी हाँ बिल्कुल आप भी हैं। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है वेस्ट मुंबई से गुलाम हुसैन जी का, और इनको सुनना है गाना दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गुलाम हुसैन जी की फरमाइश थी वेस्ट मुंबई से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिखा थैंक यू मैम, दोस्तों का नाम है, मिल नहीं करती हैं वो, और सभी दोस्तों के साथ गाना सुन रहे हैं। दोस्तों का इनका नाम है आयुष, प्रिंस, लकी, समीर, शाकिब, रुबीना, ब्यूटी, हीना, गुड़िया, साजा, सबीना, यास्मीन, श्लेहा, सबाना, अरीशा, सभी के साथ गाना सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, और सावन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि किसी के दिल ने कहा है प्यार एक धोखा है, किसी के दिल ने कहा है प्यार एक धोखा है, प्यार उसी से करो जो पास में हमेशा रहता है। नमस्कार नमस्कार, कुछ है नया समाचार, अपनों ने याद किया, गैरों ने दूर किया, जख्म तो वो दिया, अपनों ने कुछ नहीं किया। और गाना सुनना है तुम्हें प्यार की बीम, ओह तूने प्यार की बीन बजाई, गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दीर जी नमस्कार, ग्राम चमरवा, जिला संभर, उत्तर प्रदेश से ब्रिजेश मिश्री जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में है राजेंद्र भाई, सतपाल भाई, मलखान सिंह, सभी लोग हैं। और लिख रहे हैं कि 2 महीने के बाद शो में जुड़ा हूँ, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है। और फिल्म का नाम है तूने अच्छा कौन, और विनोद राठौर जी की आवाज़ में आज से पहले गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि चाहता हूँ उसका नाम लिख दूँ, चाहता हूँ उसका नाम लिख दूँ अपनी हर शायरी के साथ लेकर, फिर सोचता हूँ बस भोली है मेरी जान कहीं बदनाम ना हो जाए। प्यार करने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है सोनी जी, जी हाँ, प्यार करने के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए अभी का समय ऐसा है, बहाना ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी बताइए ना, तो हेलो जी, आपकी भी गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। विनोद चौहान

जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, दिलीप राम जी की फरमाइश है जब साथ दिवे किनारे हैं। तो एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिंगम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे दिलीप रामजी की फरमाइश थी दिल्ली से, और राग लिखते हैं कि सोचा उस पल दिल कितना मजबूर होता है, सोचा उस पल दिल कितना मजबूर होता है जब कोई किसी की यादों से चूर होता है, प्यार क्या है पता तब चलता है जब कोई किसी की नजरों से दूर होता है। सुनो जी, बहुत बहुत शुक्रिया गाना सुनाने के लिए आपको। दिलीप राम दिल्ली से फिलहाल सिहोरवा से हैं, और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते दिलीप भाई, राहुल गाना बढ़िया बा, और मैसेज करने वाला बानी सगीर आलम सी। और बढ़िए आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जब साथ देवे के नारे है, दिलीप जी का गाना सुनाए दिलीप जी को, धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश जी दिल्ली से, और यहाँ गुरु गोविंद जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। और यहाँ कॉल रिसीव करते हैं, कॉल कट चुका है, तो चलिए अगली फरमाइश लेते हैं इंस्टाग्राम से, और मैसेज की है इंस्टाग्राम पे, नाम है इनका, नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं, और नाम जरूर लिखा करिए, जब भी बार बार बोल रहे हैं कि जब भी आप लोग मैसेज करिए साथ में नाम जरूर मेंशन किया करिए। और नीतीश जी जुड़े हुए हैं, इनको सुनना है गाना अंकित अग्रवाल की आवाज़ में, बजरिया में राजा पिताजी में, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है और यहाँ प्रीति रदास जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून। और लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से जुड़ी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा भी आज लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है। और आगे लिखते हैं कि लेट से सो में जुड़े सो बट मैं सो सुन रही थी। ओहो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि जहाँ प्यार होगा वहाँ दर्द तो होगा, जहाँ प्यार होगा वहाँ दर्द होगा, जहाँ दर्द होगा वहाँ प्यार होगा, करो उस दर्द से इतना प्यार कि वो दर्द दर्द ना रहे, बन जाए प्यार से। और मैसेज करने वाले हैं वारिश खान जी, कतर से बढ़ेंगे आगे। हाँ और भी सारे मैसेज हैं और लिख रहे हैं कि यारों की महफिल में हम भी मुस्कुरा लेते हैं। सोनी मैम, यारों की महफिल में हम भी मुस्कुरा लेते हैं, दिल की दर्द को हंसी में छुपा लेते हैं, कोई समझे या ना समझे हाल है दिल हमारा, हम तो अपने जख्मों को भी गले लगा लेते हैं। और मैसेज करने वाले हैं गुरु गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रही है कि मैडम जी मैं फरमाइश करूँ क्या? सानिया सैफी अच्छा खसना से, बिल्कुल करिए शौक से, पूरी कोशिश है, हम आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ विनोद चौहान है मुंबई से, लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, वो है प्यार काहे बनाया राम ने गाने की।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे प्रदीप सहानी थे दिल्ली से और इन्होंने लिखा है कि सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू मैम जी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजेश मिस्त्री हैं लिख रहे हैं कि जिला संभल से जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पे प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी मैं भी लाइन में हूँ प्लीज़ सुबह से सुन रहा हूँ और पिछले वाले लोग आगे हो गए बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। रोहित जी हैं देहरादून से आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं नमस्कार जी धर्मेंद्र सहानी समस्तीपुर से और आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ मुझे भी गाना सुनना है बिल्कुल पूरी कोशिश है आपकी फरमाइश प्ले करने की बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी हैं छोटपुर से लिख रहे हैं कि काम का इतना प्रेशर साथी थोड़ा सा अलग था अभी फिर से शो से जुड़ गया हूँ बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो हेलो
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में
1: मैम गाना सुनना
0: जी गाना तो सुनाएंगे नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से क्या हाल चाल है
1: बढ़िया है अपना सुनाइए मैम
0: मेरा भी बढ़िया है तो
1: गाना सुनवा दीजिए मैम
0: जी
1: पुराने गाना है प्यार किया तो डरना गजब प्यार किया तो डरना
0: प्यार किया तो डरना क्या
1: ना गजब प्यार किया तो डरना गजब प्यार किया
0: गजब प्यार किया तो डरना
1: वो पुराना गाना है प्यार किया कोई चोरी नहीं की
0: छुप छुप आए भरना क्या वही वाला गाना ना
1: हाँ वही गाना
0: तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ और गाना सुनाना भी है जी तो प्ले कर दिए गाना आपकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय जुड़े
2: न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के

0: सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
6: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
6: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिमा 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ फरमाइशों की बात करें तो काफ़ी सारी फरमाइशें हमारे पास पहुँची हुई है और मैसेज भी। फिलहाल मैसेज को रोकेंगे और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है देहरादून से, रोहित जी का, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अगली फरमाइश आपका पूरा करते हैं। एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। रवि गाना सुन रहे थे, रोहित जी की फरमाइश थी और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। गाना तो काफ़ी बढ़िया था और क्या सही में सास जी आपकी नखरे वाली है, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और मैसेज है, सिर्फ हाय का मैसेज है और नाम मेंशन नहीं है। नाम ज़रूर बताइए आप कौन है, कहाँ से, सिर्फ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है तो नाम ज़रूर मेंशन करिए, हम आपकी यानी कि फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और यहाँ मैसेज है, गुरु नानकपुरा वठीरा पंजाब से किशोर सबलनिया, सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया बेटी अंशु के साथ जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं हेलो मैडम जी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है और ठीक है, हेलो जी मुझे भी गाना सुनना है, गाना सुनवा दीजिए। सिंगर अंकुश राजा की आवाज़ में रमेश कुमार जुड़े हुए हैं राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश पहुँची है कॉल के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसी है मैडम?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अच्छा,
0: ना जी ना कश्मीर गए थे ना लंदन गए थे, कुछ काम था इसीलिए नहीं आ रहे थे। अच्छा, नेहा बात कर रही है ना
1: जी? मैडम जी,
0: जी तो घर परिवार में सब लोग कैसे हैं नेहा जी?
1: लगता है,
0: पता जी, मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे घर में भी सभी लोग अच्छे हैं। तो आज कौन सा गाना सुनवा दे आपको?
1: यादों की चादर जी।
0: और सुनवाना भी है
1: जी आपको, जितना
0: आप। चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल की।

0: 94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफी सारे फरमाइश और अभी अभी मैसेज भी है, और कुछ मैसेज शामिल करते हैं। और यहाँ लिख रहे हैं कि पहले थी जब नई नई शादी हुई थी तब, अब तो सही रहती है, मुझे यह गाना बहुत ही अच्छा लगता है, मन किया तो सुन लिया। जी हाँ बिल्कुल, और रोहित जी है देहरादून से, और आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुन दी हमसे दुश्मनी है क्या कि हमारी फरमाइश पूरा नहीं किया कोई बात। जी नहीं बिल्कुल, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, और एक दिन में इतनी सारी फरमाइशें आती है, किसी ना किसी का तो छूटेगा ही, और आपकी फरमाइश छूट गई इसके लिए माफ़ करिएगा। कल फिर जुड़िएगा, कल पूरी कोशिश करेंगे हम आपकी आने की फरमाइश प्ले करने की। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम बिना बताए भाग जाने का यही कारण है, सबका जवाब देते रहिए बारी बारी से। जी हाँ बिल्कुल, अब जो सुन रहे हैं वो तो उनको तो जवाब मिल गया है, जो अभी तक रेडियो नहीं सुन रहे हैं उन्हें जवाब नहीं मिला, और बारी बारी से तो देना ही पड़ेगा। और धनेश जी हैं दिल्ली से, और बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं बाय बाय मैडम जी, प्रीति जी हैं। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड बाय नमस्कार, फिर मिलेंगे। जी हाँ फिर कल मिलेंगे, और मैसेज करने वाले हैं उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है चखरसना से सानिया सैफी जी का, तो चलिए प्ले कर रहे हैं आपकी गाने की फरमाइश को, और वॉइस पहुंचा हुआ है तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया सैफी चखरसना से, और कैसे आप सभी जरूर बताइएगा, और मुझे भी आज के सोने सॉन्ग सुनना है तो सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, डेडिकेट है मुझको, सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू।
0: और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए आज की शो से मुझे जाने की इजाजत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिर मिलते हैं आप सभी से इसी शो में इसी समय पे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
12: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर X सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 4444।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़ दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
1: और 9097-6160-02।
4: ठक ठक
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
7: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: उत्तर बिहार का गौरव,
3: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
3: और अपने भाषा की पहचान,
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
13: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
13: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
14: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
14: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
15: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
16: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
17: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
18: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
17: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
19: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
20: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
21: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
22: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
13: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
13: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे, मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़, भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
13: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
13: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
14: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
13: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
23: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
14: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
13: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
14: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
13: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
14: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
13: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
14: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
23: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
24: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
23: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
23: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
23: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
23: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
23: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
25: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
26: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
23: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
27: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
28: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
29: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
30: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
31: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
32: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
23: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
32: तो फिर देर किस बात की, चलो।

0: कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
2: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क 99-393-65-930।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444। कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहां जाऊं, किससे इलाज कराऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हां, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन

0: का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
1: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
2: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
0: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने के
4: लिए। हेलो, मैं पिक इट अप। हेलो, मैं पिक योर फोन अप।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजन के कार्यक्रम चॉइस में।
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
2: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: शैलेश तिवारी
2: जी। कहाँ से आप?
1: पटना के बगल में, राजीव नगर।
2: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप ठीक है ना?
2: जी मैं ठीक हूँ।
1: वो गाना है बाबुल की, दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।
2: जी
1: बैठे की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, इस गाना को सुना दीजिएगा।
2: ओके, फिर ये गाना किसको किसको कहते हैं?
1: सुनने वाले तो सब कुछ सुनने करेगा जब सुने, वो हमें अकेले से सुने जाए।
2: हाँ जी ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहते हैं आप रेडियो रंजन में कॉल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बाबुल की दुआएं लेती जा तुझ

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। क्या नाम है आपका?
1: लाल
0: जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक है, मैं बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: चलिए, आज का फिल्म का नाम है बीगर।
0: जी,
1: आए हम बराती बराती।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ, ये गुड़िया है, रूबी है, सास है, गुड्डू है, सूरज है, सीमा है।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक

0: मशीने और एक ही छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
5: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: क्या हाल है मैम?
7: बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
8: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
7: क्या नाम है आपका?
8: नलबार प्रसाद नारना, पंचायती राज कल्याण पुरसुन।
7: क्या हाल है आपका?
8: बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे हैं।
7: फिर बताएं क्या हो रहा है अभी?
8: आप कैसे हैं?
7: मैं बढ़िया हूँ।
8: चलिए जी, आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है, आपका रेडियो पर सुनने के लिए हम बेकार हैं। बिल्कुल दूर से हैं फिर भी हम करीब से हैं, आसमान से हैं, देवे हम धरती से हैं, इंग्लिश दिशाएं से हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट।
7: ओके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
8: सुना दीजिए, एक मुलाकात की जरूरी है सना।
7: और ये किस गाना चाहते हैं?
8: मैम सबसे तो पहले आपको भारती जी को, भारती ना बोल रहे हैं मैम
7: जी,
8: एक बार आप बोले पूरे दिमाग में बैठ गया, टेप हो गया, रिकॉर्डिंग भी सर है कि नहीं? और हमारे जितने भी स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, लोजर स्वास्थ्य अभियान से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से
7: जी,
8: सारे को और हमारे इंजीनियर सरेंद्र के प्रसाद, तीन बाबू फायरफुल शर्मा 5 नंबर वार्ड, और आपको
7: जी। बिल्कुल ठीक है, फिर
8: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम।
7: धन्यवाद
8: जी, थैंक यू वेरी मच।
7: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: अच्छी बात है, नमस्कार जी।
7: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टूरिज्म के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, खरीदपुर बघापुर भी चंपारण से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा हूँ। आप अपना सुनाइए घर परिवार में और रेडियो रिपोर्टिंग पूरा परिवार, कैसे हैं आप लोग? जी,
1: सब कोई बढ़िया है। भारती
0: आपका शुभ नाम? भारती
1: जी,
0: जी ठीक है। और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर मौसम अभी बहुत गर्म है
0: जी जी ऐसा ही मौसम इधर भी बना हुआ है।
1: जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा
0: जी, बहुत अधिक गर्मी है ऐसे तो, और भी मौसम विभाग के अनुसार जो बहुत अधिक गर्मी ऐसे शुरू हो रही है।
1: ही
0: जी, तो बच के रहिएगा, घर धूप में मत जाइएगा।
1: जी, धूप में तो नहीं रहना पड़ता है। आप
0: जी, आप तो एसी में है तो बेसी हवा मिल रहा होगा उसमें ठंडी।
1: क्या करते हैं? अच्छा,
0: जी, बिजनेस व्यापार है।
1: फिर बताएं क्या कमाई थी आपकी?
0: फिल्म का नाम है आजाद देश के गुलाम, और गाने का बोले सारे सिकुड़े गीदे भुला के कहो जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो।
1: ओके, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ,
1: ओके,
0: और दूसरे लोग है नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास सभा कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, कंसराज यादव जी, अंचल कुमार जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुलिता जी, सूज मोहन जी, नवीन सिंह जी, चंद्र जख्मी जी, प्रमोद पांडे जी, और ऐसा भी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो,
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
8: हेलो
7: जी, क्या नाम है आपका?
8: प्रीति कुमारी।
7: और कहाँ से हैं आप?
8: सोना मोर डुमरिया।
7: क्या हाल है प्रीति जी?
8: बहुत अच्छे, आप कैसी हैं?
7: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
8: बैठी हूँ।
7: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
8: आपका आवाज बहुत अच्छा है।
7: धन्यवाद। क्या फरमाइश है आपकी?
8: बता रही हूँ, रुक जाइए। भोजपुरी सॉन्ग है
7: जी। बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
8: पवन सिंह का
7: जी। बताएं
8: हम तोहरा प्रीतिया में
7: जी। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
8: आपको।
7: मुझे?
8: जी जरूर, आप सुनिएगा।
7: जी बिल्कुल सुनेंगे।
8: कब तक बजा देंगी?
7: थोड़ा समय लगेगा लेकिन गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मुझे एक और गाना सुनना था, बजा
0: जी बताएं।
1: देंगी ना?
0: जी बताएं, पहले गाने का नाम बताएं।
1: जो अभी नया नया सॉन्ग आया है शरारत,
0: जी
1: वही
0: जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आपको?
0: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: Now pick your phone up. Hello? Pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
8: जी, मैं सुधीरपुर बोल रहा हूँ, जिला देवघर, झारखंड से।
7: जी, क्या हाल है?
8: हालचाल बिल्कुल ठीक है मैम। आप कैसे हैं और आपके रेडियो रंजन की पूरी टीम कैसे है मैम?
7: मैं ठीक हूँ और मेरे रेडियो रंजन के सारे टीम बहुत अच्छे हैं।
8: जी,
7: क्या हो रहा है अभी?
8: अभी क्या होगा, धूपा जुल्लू चल रही है और गर्मी में छाया में बैठे हुए पेड़ के नीचे।
7: जी, क्या फरमाइश है आपकी?
8: जी सुना दीजिए मैम, धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म है इज्जत, इसका गाना सुना दीजिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, तरह के गीत के बोल।
7: जी, और ये गाना किसे सुनाना चाहते हैं?
8: जी, सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रूम की पूरी टीम को और जितने भी रेडियो रूम के श्रोतागण हैं देश विदेशों में, सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
7: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: क्या करिए, सब ठीक है?
0: ये सब बढ़िया।
1: आज कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम? मैडम तो ऐसा है कि कोई गाना सुनवाइए ना अपने पसंद से, कोई अच्छा सा।
0: ये फरमाइश तो है ना, तो आप अपनी पसंद से बता दें।
1: अरे हम तो बता ही देंगे ना।
0: जी
1: तो सावन आया है ना, बादल छाया है ना, ऐसे गाना है उसको तो बजा दीजिए।
0: ओके, और ये गाना आप किस किस को सुनाना चाहते हैं?
1: और सुनाना है क्या आपको? सुनाएंगे और जितने रेडियो प्रेमी है लोगों सुनाएंगे।
0: ओके,
1: ये गाना सुना दीजिएगा मैडम।
0: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
3: और 9097-6160-02।
6: Now pick it up, now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up.
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: नमस्ते मैडम जी।
9: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
10: नेहा
9: जी। कैसी हैं आप?
10: अच्छा है, आप बताएं कैसे है? नाश्ता हो गया
9: जी? मेरा हो गया, आप अपना बताएं।
10: मेरा नहीं हो गया मैडम जी, गाना खा ले।
9: फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
10: आए हम लौट चले
9: जी,
10: यही फिल्म का गाना, यही गाना।
9: अच्छा, एक बार और बताएंगे?
10: आए हम लौट चले।
9: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
10: आपको, जितना रेडियो मार दिया, सब दोस्त सुनकर इसके साथ सुनना चाहूँगी
9: जी। बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: नमस्ते मैडम जी।
9: नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार।
0: सर हमको एक गाना सुनना है करीना पांडे के आवाज में।
1: जी बताएं।
0: नथिया ले अला उधार राजा जी, रास्ता चली ले तो मांगेला सोनार राजा जी। मेरा नाम है जोगी शर्मा, ग्राम एक डरवा मौजे, और एक मेरा दोस्त है श्रवण शाह। हम लोग दो आदमी बैठे हैं सुनते हैं। नमस्कार
1: जी। गाना अपने
0: हम तो डेली

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।

0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम पंकज है।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: माझा से।
5: जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है।
5: अभी क्या हो रहा है?
6: अभी काम चल रहा है।
5: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
6: वेल्डिंग का काम करते हैं, स्ट्रक्चर लाइन में।
5: ओके, थैंक। क्या फरमाइश है आपकी?
6: एक गाना सुनना था। मैं
5: बता दे कौन सा सॉन्ग सुनना है?
6: ये दुनिया अरे महफिल मेरे काम की नहीं।
5: ओके,
6: यही गाना सुनना था।
5: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
6: हाँ, मेरे सुमन मामा है और श्रीराम भैया है, उनको।
5: जी,
6: वो डेडिकेट रहेगा और पूरे रेडियो रेंज दर्शक को।
5: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूबीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: क्या जी हेलोमान जी, नाथ जी क्या हाल चाल
0: जी? बढ़िया है
1: और सब सही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है
0: जी। गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
1: हाँ कहिए मोहतरम, घर से मुश्किल है निकलना, बाहर निकलने का मन नहीं करता।
0: फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना सुना दीजिएगा अमरजीत की आवाज में, ऐसा प्यार कहाँ मूवी का
0: जी।
1: गाने का बोल है, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। और सुनने वाले हैं सभी हमारे जितने रोशन टेलर में हम लोग काम करते हैं धनाव में, हम भी सुनेंगे और जितने रेडियो सुनने वाले हैं सोचा सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
0: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद। ठीक है मैडम।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello?
6: Now pick your phone up.
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
10: हेलो,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: गुड आफ्टरनून।
9: गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
10: मेरा नाम गणेश कुमार।
9: अच्छा, क्या हाल है?
10: बढ़िया है, अपना बताइए।
9: मेरा भी ठीक है।
10: धूप हुआ है?
9: धूप तो बहुत तेज हुआ है उधर।
10: तो रूम में आराम से बैठे है ना?
9: जी, रूम में है, आराम से बैठे हुए है, लेकिन बाहर तो बहुत तेज धूप है ना।
10: खाना वाना खा कर आए हैं कि नहीं?
9: जी, खाना खा के आते हैं, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
10: फरमाइश कौन सी का? भोजपुरी बजा दीजिए।
9: गाने का नाम बता दें आप।
10: बेवफाई बजा दीजिए कोई भी।
9: अच्छा, पर ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
10: आपको, पूरा रेडियो रिमझिम लोग को। सोनी मैम को सुनाना चाहते हैं, देविया मैम को सुनाना चाहते हैं।
9: ओके,
10: मेरे बहन है करिश्मा, उसको भी सुनाना चाहते हैं। वो गई है अभी थाने।
9: जी,
10: थाने का ये पूजा करने।
9: जी, माता जी के मंदिर।
10: जी,
9: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: ठीक।

0: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोढ़ा मनसिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साह।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मेरा हाल खबर बढ़िया है, आप सुनाए, आप कैसे हैं? आपकी पूरी रेडियो रंजन संपूर्ण परिवार कैसे है?
0: मैं ठीक हूँ और सारे रेडियो रंजन के टीम मेंबर ठीक हैं।
1: जी जी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आवाज तो चेंजिंग लग रहा है
0: जी।
1: चलिए ठीक है, बढ़िया बात है।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश रख दीजिए, पहले मौसम बताइए, उधर का मौसम क्या है?
0: इधर का मौसम तो अभी बहुत गर्म है।
1: जी जी जी, गर्म तो इधर भी है।
0: जी
1: जी जी, गाना सुना दीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना के हम नहीं जानते, इसी करके गाना है ना, मोहम्मद लफी की आवाज में शायद होगा।
0: जी है गाना।
1: हाँ, तो वही सॉन्ग सुना दीजिए, हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते।
0: ओके।
1: और डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको सुनाएंगे, आपको होली सफर पेवा को
0: जी।
1: और दोस्त में हो गया सखाना से मोहम्मद साबिर जी, महेश से उत्तम कुमार जी, रामलेश्वर कुशवाहा जी, कृष्णा गहा से अरविंद कुमार, कला बरपुरगंज से नरेश सोहनी, नसुद्दीन खान, दीपक दास, सखरे जीना साहब, धर्मेंद्र यादव, देखो धनराज प्रसाद कुशवाहा, रामबदन राम, भैरव जी, शकर प्रसाद शंभू, पारसनाथ कुशवाहा, पारस शर्मा, राजेंद्र यादव भारती, संतराल गौतम, हमारे नाम से जाने पर तमाम दोस्त खास मधुबलिया का सलाह जानकारी को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
0: जी, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: एपिसोड 27।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी किंतु कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे। उनके क्रोध की सीमा ना रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
9: एपिसोड 28 28।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में हुए शामिल। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसों की होगी स्थलीय जांच, प्रखंड स्तर पर जांच समिति का होगा गठन। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ साथ पहली बार नगर निकायों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले की अलग अलग पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ तय समय सीमा के भीतर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया।
1: शेखपुरा जिले के सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने कहा कि जनता के समस्याओं को लटका कर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: यदि आपने कोई आवेदन दिया 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाता है। किसी का कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
2: कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं लोगों को। यदि सरकार और यदि पुलिस को कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस 48 घंटे में उसको जवाब देने का काम हमारी पुलिस करने का काम करेगी। अपराधी किसी जात का नहीं होता। कुछ लोग इसको दिल पर लेते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं। अपराधी अपराधी है साथियों।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
0: शेखपुरा के बाद मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड की परसोनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 288 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इधर हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि जिले की 31 ग्राम पंचायतों और 17 नगर निकायों के विभिन्न वार्डो में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।
3: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी नौबतपुर प्रखंड की खजरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मकसद सिर्फ आवेदन लेना नहीं बल्कि लोगों को तुरंत न्याय और राहत पहुंचाना है। उप मुख्यमंत्री ने शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी। शिकायतों में भूमि विवाद, स्थानीय विकास योजनाओं, राशन कार्ड, सड़क निर्माण और प्रशासनिक शिथिलता से जुड़े मामले मुख्य रूप से शामिल थे। इधर पटना के रुकनपुरा में आयोजित सहयोग शिविर में स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था उपलब्ध थी। शिविर में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाई भी उपलब्ध कराई गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: सारण जिले के नयागांव आमी और फेरूसा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हुए। विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव सहयोग शिविर में मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उनका तबादला कर दिया है। यह कार्रवाई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया

0: में सामने आई गड़बड़ियों और विवाद के बाद की गई है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है, जिसका नेतृत्व क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगे। इस समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपनी होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त मदरसों की स्थलीय जांच कराने के लिए प्रखंड स्तर पर 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने बताया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय स्थित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक को सदस्य बनाया जाएगा। समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट, फोटो और अन्य साक्ष्यों के साथ जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि शिक्षा विभाग की बैठक में संस्कृत विद्यालयों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए भी एक समिति के गठन का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रावास योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थी।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 2 श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री कुमार बिहार विधानसभा सचिवालय के नेवा केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
1: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
0: बिहार संग्रहालय पटना में आज से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। एक रिपोर्ट।
2: 7 जून तक चलने वाले समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़कर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला और कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3: बिहार म्यूजियम में 2 विधाओं पे काम हो रहा है। एक तो मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला है, क्योंकि बिहार संग्रहालय के पास बहुत अच्छा संग्रह है मूर्तियों का, तो उनको पूरा घुमाया गया है, उनको जो अच्छा लगे वो बनाएंगे। दूसरा, बिहार संग्रहालय में जो चीज है उसको देख के कहानी लिखने की कला, तो उसे उसको देख के उनकी कल्पना खुले और क्या कहानी सोचते हैं वो उस समय के बारे में, और दोनों जगह पे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया गया।
2: समर कैंप में शामिल हो रहे बच्चों ने किताबी दुनिया से इतर उनकी कल्पनाओं को एक नया मंच मिलने पर प्रसन्नता जताई।
4: मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे, बहुत सारे नए स्किल्स एंजॉय कर रहे हैं।
5: ये बच्चों को प्रोत्साहन करने का एक तरीका है। और अभी जो ये मैं टेराकोटा के लिए आया हूँ, इसके लिए मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि ये एक नया स्किल है जो मैं सीखना।
6: हम लोग कई तरह के चीजें सीखे और आर्ट सीखकर ऐसे हम लोग को अभी पता चलता है कि पुराने जमाने में भी इंजीनियरिंग का काम होता था।
7: यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे मौर्यन गुप्ता में कैसे कॉपर कॉइन्स और उस टाइम के टेराकोटा पेंटिंग्स कैसे थे, वहाँ के आर्टिसंस कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, कैसे हम लोग आज भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
2: आज के डिजिटल दौर में इस तरह के शिविर बच्चों की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही ऐसे आयोजनों से बच्चों में टीम वर्क और कौशल विकास की भावना भी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बांका जिले के चांदन अंचल कार्यालय में पदस्थापित सर्वे अमीन आदित्य कुमार को 8,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमीन सर्वे के कागजात में अशुद्धियों को सुधारने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 21 लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूगढ़ भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 258 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खिलाफतपुर गांव में रेलवे लाइन के नजदीक बिजली की तार की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र यादव को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय खेत बचाओ अभियान के तहत शिवहर जिले के हरनाही और शेखपुरा जिले के गोसाई मटी गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में हुए शामिल। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसों की होगी स्थलीय जांच, प्रखंड स्तर पर जांच समिति का होगा गठन। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: हिम्मत कैसे हुई तेरी? दिमाग ठीक है तेरा?
1: Bro, please try to understand यार।
0: अगर ऐसी बात होती तो कीर्ति मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करती?
1: ये देख, हमारे पिछले 5 साल की फोटोग्राफ्स, वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। Bro, please help me out।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: उत्तर बिहार का गौरव,
10: सारण प्रमंडल की शान,
9: गोपालगंज की धड़कन
10: और अपने भाषा की पहचान,
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल

0: तिलंग ही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, रिक्तियों की संख्या है 323। तकनीशियन ग्रेड 3, रिक्तियों की संख्या है 6242। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस 1 पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी 1 पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग 1 पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर 1 पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा गोपालगंज। कॉल अस 9939।

0: 9727 1308।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: भी दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन तो ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
2: डिजिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी कॉमेंट ऑन देम।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
18: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
19: क्यों, क्या हुआ है?
18: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
19: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
18: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
19: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
20: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
22: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चाकूबाजी कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज के नोट का बंडल बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। विभाग के सचिव ने सिधवलिया मिल का किया निरीक्षण। 2 दिन से लापता एक युवक का खेत में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कटिया में लगा सहयोग शिविर, सुनी गई जनता की समस्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। छावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा में पूर्व के आपसी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने और चाकू से हमला करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में थावे पुलिस ने अब त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से जांच पड़ताल करने के बाद घायल व्यक्तियों को जहां उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि घायलों में एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिसको स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने थावे थाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की है और इस कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नामजद अभियुक्त मोहम्मद कुदुस शाह उर्फ अब्दुल कुदुस पिता स्वर्गीय सलीम शाह साकिन एकडेरवा थाना थावे को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर आए दिन लोगों को जाली नोटों के बंडल थमाकर ठगों द्वारा ठगी की घटना सामने आ रही थी। इसमें पुलिस विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुहम्मदपुर क्षेत्र से ही एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है जिसमें कई नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। उस कांड का अनुसंधान अभी चल ही रहा है, उसमें बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तब तक एक और मामला सामने आया, इसमें भी तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में NH 27 पर चंदन पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग डुमरिया पुल की ओर से मोहम्मदपुर की तरफ आते दिखे। पुलिस की जाँच को देखकर वे मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें पुलिस ने पीछा करके बल प्रयोग करते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों की पहचान पवन कुमार साहनी पिता वकील साहनी और उमेश शाह पिता शिवमंगल शाह तथा नंदन साहनी उर्फ बाबूजी उर्फ बुढ़ा पिता स्वर्गीय गणेश साहनी, ये सभी साकिन चांद परसा थाना केसरिया जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से दो मोबाइल फोन तथा एक कागज के ऐसे बंडल मिले हैं जिनके ऊपर और नीचे 500-500 रुपए के असली नोट लगे हुए थे और बीच में कागज भरा हुआ था। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे बैंक से पैसे निकाल कर आने वाले लोगों को अधिक रुपए का लालच देकर उक्त बंडल थमाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इस मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके दो मोटरसाइकिल को जब्त किया है और मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान की गई है। मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। आज गन्ना उद्योग सह सहकारिता विभाग बिहार सरकार के मंत्री गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिधवलिया चीनी मिल का निरीक्षण किया और चीनी मिल के विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही कृषकों के साथ भी विचार विमर्श किया गया जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं चीनी मिल द्वारा ईख मूल्य भुगतान गन्ना सर्वे उर्वरक की उपलब्धता मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना यांत्रिकीकरण योजना जल निकास एवं गन्ना विभाग तथा अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव ने ससमय सर्वे का कार्य पूर्ण करने ईख मूल्य भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया। गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा क्षेत्र विस्तार करने पर भी बल दिया गया एवं गन्ना प्रसार यंत्र एवं प्रशिक्षण के द्वारा गन्ना को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। किसानों के द्वारा बताया गया कि घोड़पड़ास के द्वारा फसल को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे गन्ने का रकबा घट रहा है। घोड़पड़ास के नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिन जिलों में चीनी मिल नहीं है उन जिलों में भी चीनी मिल स्थापित करने की बात कही गई। जल जमाव के कारण भी फसल क्षति होती है जिससे उत्पादन घटता है, अतः जल निकास पर भी बल दिया गया। उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अच्छी फसल लगाने का भी निर्देश दिया गया। सरकार चीनी मिल एवं किसानों को मिलकर कार्य करने की बात कही। सचिव महोदय ने कहा कि किसानों को हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि भी हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा बैठक में चीनी मिल के पदाधिकारी पर्यवेक्षक क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भारत सुगर मिल सिधवलिया के पदाधिकारियों के साथ ही ईख पदाधिकारी गोपालगंज सिवान एवं अन्य सहायक ईख विकास पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो बलुआ टोला के 40 वर्षीय मोहन यादव रविवार की शाम को घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजन परेशान थे। सोमवार को भी इनकी तलाश की गई, परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसी बीच बताया जा रहा है कि इनका शव पुलिस ने खेत से बरामद किया है। परिजनों का आरोप है कि बाजार से मोटरसाइकिल पे बैठा कर कुछ बदमाश इनको ले गए थे और पूर्व के विवाद में इनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल परिजनों को हत्या की आशंका है और इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि बिसम्भरपुर थाना क्षेत्र के गुमनिया दियारा विजयपुर चंवर से पुलिस ने मृतक मोहन यादव के शव को बरामद किया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आज इनके परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों एवं कृषक समुदाय के बीच सामेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं कृषि की सतत उत्पादकता को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संदेश में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने दीर्घकालीन मृदा उत्पादकता एवं पर्यावरण स्थिरता बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के समुचित संरक्षण हेतु सामेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने का आह्वान किया तथा बताया कि संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने से समय के साथ मृदा के इन गुणों में सुधार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा के सभी गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में कटिया प्रखंड में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं को सुनने के बाद सरल एवं सुगम माध्यम से समस्याओं के निदान करने की दिशा में पहल भी किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य प्राप्त आवेदनों एवं जन शिकायतों का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करना है। शिविर के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान हो रहा है। साथ ही प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निष्पादन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। 9 तारीख को छपरा में भीष्म एक योद्धा ना भूतो ना भविष्यति का मंचन गोपालगंज के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। छपरा के मशहूर भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में शाम को 6 बजे से गोपालगंज के बेहतरीन कलाकार इस नाट्य प्रस्तुति को करने के लिए ललायित होकर तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बसंत उत्सव पर इस नाटक का गोपालगंज के अंबेडकर भवन में भव्य प्रस्तुति हुआ था। इस दौरान काफी लोगों ने इस डिजिटल नाटक की प्रशंसा की और जिला प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन से अधिक सम्मान से नाटक के कलाकारों को सम्मानित किया गया था। अब इस नाटक का दूसरी बार छपरा की धरती पर मंचन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जदयू पार्टी ने कैंप कार्यालय में कटिया प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य एवं सिधवलिया प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर द्वारा अपने अपने प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में 9 मनोनीत पंचायत अध्यक्षों की सूची तथा 9 गठित कटिया एवं सिधवलिया प्रखंड कमेटी की सूची जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल को औपचारिक रूप से सुपुर्द किया। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, पंचायत स्तर तक पार्टी के विस्तार तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने 9 मनोनीत पंचायत अध्यक्षों एवं प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गोपालगंज में विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को एक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित एवं वैध प्रवासन, विदेश में कार्यस्थल की परिस्थितियां, श्रमिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, वित्तीय साक्षरता, सांस्कृतिक अनुकूलन, भारतीय दूतावासों द्वारा उपलब्ध सहायता तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी
0: प्रदान की जाएगी। इसके लिए बीएसडीसी गोपालगंज सदर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिरीपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 630 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया। एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मिसिर बतराहा के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान ट्रक से 630 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस दौरान अनिल कुमार पिता स्वर्गीय चंद्रमा पांडे साकिन बलहा थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया तथा शराब लदे हुए ट्रक को जब्त कर इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी 18 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कोइनी ओवर ब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल सहित शराब को पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उसके अंदर से 18 लीटर से अधिक शराब मिली। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दिया है। कटिया थाना की पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल कुशवाहा पिता योगिंदर कुशवाहा साकिन मोहनपुर थाना कटिया जिला गोपालगंज को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
3: चाकूबाजी कांड के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज के नोट का बंडल बनाकर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। विभाग के सचिव ने सिधवलिया मिल का किया निरीक्षण। दो दिन से लापता एक युवक का खेत में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कटिया में लगा सहयोग शिविर, सुनी गई जनता की समस्या।
0: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा मिला ही नहीं।
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
24: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
24: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
26: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
25: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
27: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
28: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
29: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
30: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
31: सुनिए सुनिए सुनिए,
32: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
31: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
32: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
31: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
33: प्रसाद क्लिनिक,
34: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
33: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
34: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
35: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करनी है तो आप लोगों को पुराने गाने की फरमाइश करनी है। और यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे भेजने का। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। दीपक जेलर जी तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आप तो कभी पूछते हैं नहीं, चलो हम ही पूछ लेते हैं क्या हाल है आपका। तो बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। लिखिए हाय अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे एक सॉन्ग सुनना है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस मैसेज को करते हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्ते नमस्कार कैसे हैं आप, मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं। तो बिल्कुल मैं भी बढ़िया हूं और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से और कहते हैं कि आज देहरादून का मौसम बहुत ही सुहाना है क्योंकि आज बारिश अच्छा हुआ और गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और थोड़ा सा सब्र करें और आप जहाँ हैं वहीं पर स्थिर रहें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय सर नमस्ते, सॉन्ग दिल कहता है चल उनसे मिल, नुशा निशा सुकुलवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने का फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करते हैं दिलीप राम जी दिल्ली से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैसेज करने वाले लिखे हुए हैं कि मैं भी जुड़ गया हूं MP महमूद केरला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि और सब ठीक है ना सोनू भाई। बिल्कुल ठीक ठाक आप सभी के बीच उपस्थित है कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं, आप सब बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं अब गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं दीपक एंड जेलर जी की। और इनकी दुख अभी ख़त्म हुई नहीं और अभी शुक्रिया अदा करने पर लगे हुए हैं, तो चलिए इनके गाने के साथ शुक्रिया अदा किया जाए और इंजॉय किया जाए रेडियो MGM 90.4 FM पे।

कमालिका शॉन्ग रेडियो एमसी 94 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि पुराने गाने या 90s के गाने की फरमाइश करना है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश करती है शबीना खातून फ्रॉम दुलिया से। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे और कुछ से मैसेज है तो देख ले, फिर इनके गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज आगे पहुँचा हुआ है, हेलो। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप कौन है आगे तो मैसेज सेंड करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो, हाय सर जी, प्रणाम सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे अल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम। बोलिएगा और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया उसका गांव प्रखंड से। और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहती हैं कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूँ हम किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा है दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं होते। मस्त सैड सॉन्ग। और आगे मैसेज अभी टाइप हो रहे हैं तो बिल्कुल करते रहे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज में लिखा गया है कि सर कल मैं सॉन्ग भेजी थी पर नहीं आप सुनाए। तो बिल्कुल कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी डिवाइस में, जिसके कारण जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे वो क्लियर ओपन नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हम कुछ ही मैसेज शामिल किए और कुछ ही गाने प्ले कर पाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी रोल नंबर 5 पे है, देखते हैं आप कब तक कोशिश करके गाना सुनाते हैं। बिल्कुल कोशिश है सबकी फरमाइश पूरी करने की, जितना समय मिला है उतना ही में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप, और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और आज मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, नाइस सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, मुझे गाना सुनना है भाई। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सबिता चौहान, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी, और मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और लग रहा है कि दिल टूटा हुआ है। बिल्कुल दीपक भाई जी एकदम टूट चुके हैं, अभी शुक्रिया अदा करने पर ही लगे हुए हैं, और तो भाई है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है, हेलो भैया आप कैसे हैं, और सलदा अंसारी मिर्गन से, तो बिल्कुल बढ़िया और आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज अभी कई टाइप हो रहे हैं तो फिलहाल आप लोग मैसेज करते रहें और हम आगे बढ़ते हैं। अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं शबीना खातून की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा सा मर लो। डेडिकेट आपको एंड शब अपी, अफसाना अपी, रोशनी अपी, सजदा जी और गुड़िया जी, हाजरा सिस्टर, खुशी जी, निशा जी, शफाक जी, हिना जी, शाहजहाँ जी, शिल्पी जी, सोनी जी, समीर भाई, कमरान भाई, और इरफान भैया, साहिल भाई, दीपक भाई, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, सावन शर्मा जी, और जो छूट गए उन सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछम 94 FM पे।

0: भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे शो चल रहा है SMS फरमाइश का। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे रोहित जी की, और यह मैसेज देहरादून से किए हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं पुराने और गाने का बोले आज जाने की जिद ना करो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे ओरिजिनल सॉन्ग के साथ फरीदा खानून गजल्स सॉन्ग है। तो आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो प्ले कर ले, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो देख ले, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फूल है गुलाब का सुगंध लेते रहिए, मन है समुंदर नहाते रहिए, प्रेम है रेडियो रिमझिम हमें सा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते नमस्ते, कागज है गुलाब का, मोहब्बत है प्यार का, दिल तो उसी पे मचलता है जो रेडियो रिमझिम पे नाम भेजता है, गाना लिखे जो खत मुझे वो तेरी याद में। सभी श्रोताओं के साथ सावन शर्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, मैं आदित्य राजीव नगर पोस्ट ऑफिस गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में आदित्य जी, आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है निशा जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आज मेरी किस्मत अच्छी है, मैं अपना गाना सुन रही हूँ 3 सप्ताह बाद। थैंक यू आपको सॉन्ग सुनाने के लिए, और दुनिया में आए हो तो लव भी ज़रूरी करना चाहिए और लव में ब्रेकअप भी होना चाहिए, वरना ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। और कहती हैं कि गर्मी आ गई है दोस्तों, थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि गर्मी पूरी कोशिश करने वाली है कि हमारी शक्लें आधार कार्ड से मैच करवाने की। बिल्कुल संभल के रहना ही चाहिए, धूप बहुत निकल चुकी है और ये लगता है कि आगे कई दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सबीना सिस्टर मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, सजदान सारी मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं गुलाम हुसैन जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह होने से पहले। तो ये तो खुद की अंदर ही एक इंसान बसा हुआ है जो हर कुछ कराता है, ये रोकने वाले और कराने वाले एक ही इंसान के अंदर दो इंसान बसा हुआ है, जो एक कहता है कि आगे बढ़, एक कहता है कि अभी रुक। तो जैसा आदेश मिलता है वैसे तीसरा इंसान करता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सनी राज पटेल हरियरपुर से और सॉन्ग, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए सबीना सिस्टर, और मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। आगे बढ़ते हैं, अब आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं रोहित जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो एम जी 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे मैसेज हमारे सौदागर करते हैं रोहित जी और कहते हैं कि दूसरी गाने हैं। तो चलिए अब आगे हम सभी तो गाने एंजॉय कर चुके हैं, अगले सप्ताह ये गाने प्ले करने की कोशिश रहेगा। और ये गाने हमको दिखाई दिए थे लेकिन आपने जो अंतिम लाइन लिखा हुआ है कि जाने की जिद ना करो, इसी के कारण इस गाने को हमने प्ले कर दिया। हमें लगा कि यही गाने हैं। सो चलिए आगे अब अगली बार एंजॉय किया जाएगा इस गाने को। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भैया एक खुशखबरी है, मैसेज देखिए। तो कौन सी खुशखबरी है? और मैसेज जो आए हुए थे वो मैंने तो शामिल कर ही दिए हैं और कुछ तो दिख नहीं रहा है। मैसेज करती हैं सजदा और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करती हैं निर्मला कुमारी और गाने की फरमाइश करती हैं दिल लगैनी जितनी बार धोखा पैनी उतने बार। उदित नारायण जी की आवाज़ में भोजपुरी गाने की फरमाइश करती हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेम छम 90.4 FM पे।

कमल के शौक रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे थे। अभी हम सभी और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का और आगे मैसेज है और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे निशा शुक्लवासी करती हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, चल उनसे मिल। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और यहाँ पे आगे मैसेज कुछ पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बिछड़ के तुमसे ज़िंदगी सजा लगती है, बिछड़ के तुमसे ज़िंदगी सजा लगती है, यह सांस भी जैसे मुझसे खफा लगती है, अगर उम्मीद ए वफा करूँ तो किससे करूँ, मुझको तो मेरी ज़िंदगी भी बेवफा लगती है। सुनो भाई नमस्कार, और मैं भी मिलल बेवफा ही मिलल सुपर सॉन्ग जे भी मिलल बेवफा ही मिलल सुपर सॉन्ग कहते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा गाना सुना दी भाई, एक एक करके तो फरमाइश प्ले कर ही रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर मैं सनी राज पटेल, प्लीज़ सर प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश में है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हो गई है नाइट, बंद करो लाइट, सपनों की पकड़ो फ्लाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट। मैसेज करती हैं सबीना का तो फ्रॉम द ललिया से। बिल्कुल आगे मैसेज है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। और यहाँ पे कौन मैसेज पहुंचा कि खुदा कभी किसी पे फिदा ना करे, कि खुदा कभी किसी पे फिदा ना करे, खुदा कभी किसी पे फिदा ना करे, अगर करे तो क्यामत तक जुदा ना करे। सुपर भोजपुरी सैड सॉन्ग लाजवाब, बहुत दर्द है मोहब्बत में। बिल्कुल मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगले पसंद के गाने। निशा शुक्लवा से करती हैं इस गाने की फरमाइश।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश हमारे पास है, और गाने का बोल दिया गया है, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। और इस गाने के फरमाइश करते हैं श्यावन शर्मा जी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के फरमाइश को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति का होने ही वाला है और आगे मैसेज शामिल करने का और गाने प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ से मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए शामिल कर देते हैं, फिर गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बढ़िया बढ़िया गाना बज रहे हैं सबके अपने, मेरा मनपसंद गाना बजा ही नहीं। और भैया जी आपसे फोटो के साथ भेजूंगा, तो बिल्कुल आगे अब से फोटो के साथ ही भेजिएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिलवा में बसल बाड़ी मनवा में बस जा, दिलवा में बसल बाड़ी मनवा में बस जा, दिनवा में मिलल बारी रतिया में मिल जा, क्या बताएं ऐसा है, रतिया में ना मिले तो एक बार गुड नाइटिया बोल जा। मैसेज करे था नहीं श्यावन शर्मा जी, और यहाँ के गाने के फरमाइश करते हुए कार्यक्रम के समाप्त करे वाला बानी हम। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई अंत में जुड़े हैं क्या करें। हाजिरी तो बिल्कुल आपकी भी हाजिरी लग गई, अंतिम गाने हम प्ले करने ही वाले हैं और श्यावन शर्मा जी की। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत ही खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत ही खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, इन्हें बना दो किस्मत हमारी, हमें नहीं चाहिए जमाने की खुशियाँ, अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। सुनो भाई सभी दोस्तों को गुड नाइट मेरे तरफ से, मैसेज करते हैं दिलीप राम जी। चलिए अंत में हम भी बोलेंगे यही, तो फिलहाल आप सब सुनते रहें रेडियो MCM 94.4 FM, जो मैसेज कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रूपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of five accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, two other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
3: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
2: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir. Mr. Jaiswal said that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. The ministry spokesperson also said the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India starting tomorrow. Mr. Jaiswal said during her visit, Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi. India have successfully conducted flight tests of the indigenously developed Rudra M2 air-to-surface missile from an airborne platform. The tests were carried out by Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force IAF under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. Ministry of Defence said all the test objectives were fully met. Defence Minister Rajnath Singh lauded the efforts of DRDO, IAF, Defence Public Sector Undertakings, Development Production Partners and Industry Stakeholders for the achievement. He said the successful tests demonstrate the growing maturity of indigenous defense technologies and mark a significant step towards Atmanirbharta in advanced weapon systems. Prasar Bharati's digital streaming platform Waves OTT has crossed 1 crore registered users in less than 2 years after its launch in November 2024. Ministry of Information and Broadcasting said the achievement marks a significant step in the growth of country's public digital media ecosystem. The ministry said this reflects the increasing adoption of indigenous digital platforms offering trusted, inclusive and diverse content to audiences in India and across the world. It said, with more than 1 crore registered users and over 1 crore 40 lakh downloads, Waves OTT is now focused on its next phase of growth. Russia launched a large-scale overnight attack targeting multiple Ukrainian cities in which at least 21 people, including 2 children, were killed and over hundreds others were injured. This marks one of Moscow's largest assaults in the recent months. President Volodymyr Zelensky said civilian infrastructure and energy facilities had been targeted across the country. And that is the end of this news bulletin.
4: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: 1 BHK, 2 BHK, एक में मैं रहूंगी और एक में जिम करूंगी। ओके जानू,
1: भाद दही सोनावा के सेट चाहिए, पटाना में दूध को फल हट चाहिए।
2: अरे एक करे जा, तू जितना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब, ओकरा खाती हम भागल ना होई। आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
3: हम संतोष पागल नहीं
4: बनो।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हो
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: बनाओ तरो।
1: अरे एक करे जा, हम बरसी ना, खाली गर्जे वाला बादल ना होई, आ जदी हमारा के छोड़ के गईलू, तब बुझ ली हो।
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: मेहनत हुआ कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं। हमेशा

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम माय चॉइस में।
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
2: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: शैलेश तिवारी
2: जी। कहाँ से आप?
1: आपके बगल में राजीव नगर।
2: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: मजे आया, आप ठीक है ना?
2: जी मैं ठीक हूँ।
1: वो गाना है बाबुल की, दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।
2: जी
1: मैं कहे की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, इस गाना को सुना दीजिएगा।
2: ओके, फिर ये गाना किसको सुनना चाहते हैं?
1: अरे सुनने वाले तो सब कुछ सुनने करेगा जब सुने, ये हमें अकेले से सुनेंगे।
2: हाँ जी ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहते हैं। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
0: लाल बाबू
1: जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: चलिए, आज का फिल्म का नाम है बीगर।
1: जी,
0: आए हम बराती बराती।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: हाँ, ये गुड़िया है, रूबी है, आकाश है, रिजू है, सूरज है, सीमा है।
1: जी, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: क्या हाल है मैम?
1: बढ़िया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
1: क्या नाम है आपका?
2: ललबहादुर प्रसाद नारना, पंचायती राज कल्याणपुर से। मैं,
1: क्या हाल है आपका?
2: बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे हैं।
1: फिर बताए क्या हो रहा है अभी?
2: आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ।
2: चलिए, ये आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है। आपका रेडियो पर सुनने के लिए हम बेकार हैं, बिल्कुल दूर से हैं फिर भी हम करीब से हैं। आसमान से हैं, धीरे हम धरती से हैं, हमारे दिशाएं से हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट।
1: ओके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: सुना दीजिएगा, इस मुलाकात की जरूरी है सना।
1: और ये किसान चाहते हैं?
2: मैम, सबसे तो पहले आपको भारती जी को, भारतीय ना बोल रहे हैं मैम
1: जी?
2: एक बार आप बोले पूरे दिमाग में बैठ गया, टेप हो गया, रिकॉर्डिंग भी सर है कि नहीं? और हमारे जितने भी स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, हुए हैं, लोजा स्वास्थ्य अभियान से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से
1: जी,
2: सारे को और हमारे इंजीनियर सर एम के प्रसाद, तीन बाबू पार्सल शर्मा 5 नंबर वार्ड और आपको
1: जी। बिल्कुल ठीक है, फिर
2: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम।
1: धन्यवाद
2: जी, थैंक यू वेरी मच।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अच्छी बात है, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो दुल्हन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मेरा विलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, खरीदपुर बघापुर भी चंपारण से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा हूँ। आप लोग सुनाइए, घर परिवार में और रेडियो रिपोर्टिंग पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
1: सब कोई बढ़िया है। भारती
0: जी, आपका शुभ नाम? भारती जी।
1: जी,
0: जी ठीक है। और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर मौसम अभी बहुत गर्म है
0: जी जी वैसा ही मौसम इधर भी बना हुआ है।
1: जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा
0: जी, बहुत अधिक गर्मी है ऐसे तो। और भी मौसम विभाग के अनुसार जो बहुत अधिक गर्मी ऐसे शुरू हो रही है।
1: जी।
0: जी तो बच के रहिएगा, घर धूप में मत जाइएगा।
1: धूप में तो नहीं रहना पड़ता है। आप
0: जी जी आप तो एसी में है तो बेसी हवा मिल रहा होगा उसमें ठंडी।
1: क्या करते हैं?
0: जी बिजनेस व्यापार है
1: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
0: जी। फिल्म का नाम है आजाद देश के गुलाम और गाने का बोले सारे सिकवे गीले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो।
1: ओके, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ
1: ओके,
0: और दूसरे लोग है नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, उस विकास सभा कुमार, सुदीप कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, कंसराज यादव जी, अंचल कुमार जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूज मोहन जी, नवीन सिंह जी, चंद्र जख्मी जी, प्रमोद पांडे जी और अभी रेडियो रिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: हेलो
5: जी, क्या नाम है आपका?
6: प्रीति कुमारी।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: सोना मोर डुमरिया।
5: क्या हाल है प्रीति जी?
6: बहुत अच्छे, आप कैसी हैं?
5: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
6: बैठी हूँ।
5: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
6: आपका आवाज बहुत अच्छा है।
5: धन्यवाद। क्या फरमाइश है आपकी?
6: बता रही हूँ, रुक जाइए। भोजपुरी सॉन्ग है
5: जी। बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
6: पवन सिंह का
5: जी। बताएं
6: हम तोहरा प्रीतिया में
5: जी। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
6: आपको।
5: मुझे?
6: जी जरूर, आप सुनिएगा।
5: जी बिल्कुल सुनेंगे।
6: कब तक बजा देंगी?
5: थोड़ा समय लगेगा लेकिन गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मुझे एक और गाना सुनना था।
1: जी बताएं।
0: बजा देंगी ना?
1: जी बताएं, पहले गाने का नाम बताएं।
0: जो अभी नया नया सॉन्ग आया है शरारत,
1: जी
0: वही
1: जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
0: आपको।
1: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: नमस्कार मैम।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, जिला देवघर, झारखंड से।
4: जी, क्या हाल है?
5: हाल चाल बिल्कुल ठीक है मैम। आप कैसे हैं और आपके रेडियो रंजन की पूरी टीम कैसे हैं मैम?
4: मैं ठीक हूँ और मेरे रेडियो रंजन के सारे टीम बहुत अच्छे हैं।
5: जी,
4: क्या हो रहा है अभी?
5: अभी क्या होगा, धूप जुल्लू चल रही है और गर्मी में छाया में बैठे हुए पेड़ के नीचे।
4: जी, क्या फरमाइश है आपकी?
5: जी, सुना दीजिए मैम, धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म है इज्जत, उसका गाना सुना दीजिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, तरह के गीत के बोल।
4: जी, और ये गाना किसे सुनाना चाहते हैं?
5: जी, सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रूम की पूरी टीम को और जितने भी रेडियो रूम के श्रोतागण हैं देश विदेशों में, सबको सुनाना चाहता हूँ मैं दिल से।
4: जी, फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। जी,
1: क्या करिए सर, ठीक है?
0: सब बढ़िया। अच्छा,
1: तो आज कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम? मैडम तो ऐसा है कि कोई गाना सुनवाइए ना अपने पसंद से, कोई अच्छा सा।
0: ये फरमाइश तो है ना, तो आप अपनी पसंद से बता दें।
1: अरे हम तो बता ही देंगे ना।
0: जी
1: तो ये सावन आया है ना, बादल छाया है ना, ऐसे गाना है, उसको तो बजा दीजिए।
0: ओके okay, और ये गाना आप किस किस को सुनाना चाहते हैं?
1: और सुनाना है क्या आपको? सुनाएंगे, और जितने रेडियो प्रेमी हैं लोग को सुनाएंगे।
0: ओके okay.
1: यही गाना सुना दीजिएगा मैडम।
0: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
6: नेहा
5: जी। कैसी हैं आप?
6: अच्छा है, आप बताए कैसे? नाश्ता हो गया
5: जी? मेरा हो गया, आप अपना बताएं।
6: मेरा भी हो गया मैडम जी, गाना खा ले।
5: फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
6: आए हम लौट चले
5: जी,
6: यही फिल्म का गाना, यही गाना।
5: अच्छा, एक बार और बताएंगी?
6: आए हम लौट चले।
5: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
6: आपको, जितना रेडियो रिमझिम मार दे, सब दोस्त सुनकर इसके साथ सुनना चाहूंगी।
5: जी बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार।
0: सर हमको एक गाना सुनना है करीना पांडे के आवाज में।
1: जी बताएं।
0: नथिया ले अला उधार राजा जी और रास्ता चली ले तो मांगेला सोनार राजा जी। मेरा नाम है जोगी शर्मा ग्राम एक डरवा मौजे और एक मेरा दोस्त है श्रवण शाह। हम लोग दो आदमी बैठे हैं सुनते हैं। नमस्कार है
1: जी। गाना प्ले सुनते रहे।
0: हम तो डेली सुनते हैं, करे या ना करे हम डेली सुनते हैं गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम पंकज है।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: माझा से।
5: जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है।
5: अभी क्या हो रहा है?
6: अभी काम चल रहा है।
5: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
6: वेल्डिंग का काम करते हैं, स्ट्रक्चर लाइन में।
5: ओके, थैंक। क्या फरमाइश है आपकी?
6: एक गाना सुनना था मैम।
5: बता दे कौन सा सॉन्ग सुनना है?
6: ये दुनिया अरे महफिल मेरे काम की नहीं।
5: ओके,
6: यही गाना सुनना था।
5: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
6: हाँ, मेरे एक सुमन मामा है और श्रीराम भैया है, उनको।
5: जी,
6: वो डेडिकेट रहेगा और पूरे रेडियो रेंज दर्शक को।
5: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू मैम।

0: जी नमस्कार।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: क्या जी हेलोमल जी, भारती जी क्या हाल चाल?
1: जी बढ़िया है।
0: और सब सही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है
1: जी। गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
0: हाँ कहिए मोहतरम, घर से मुश्किल है निकलना, बाहर निकलने का मन नहीं करता।
1: फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: गाना सुना दीजिएगा मोहम्मद जी की आवाज में, ऐसा प्यार कहाँ मूवी का
1: जी।
0: गाने का बोल है, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। और सुनने वाले हैं सभी हमारे इतने दर्शन टेलर में हम लोग काम करते हैं धनाव में, हम भी सुनेंगे और जितने रेडियो रेंजिन सुनने वाले हैं सोचा सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंजिन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद। ठीक है मैडम।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone din din bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: सोनी मैडम है क्या?
6: जी नहीं।
7: वही तो देख रहे हैं, सोनी मैडम ना लग रही है। आपका क्या नाम हुआ?
6: मेरा नाम भारती है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम है रविकांत कुमार, झारखंड कोडरमा जिला।
6: जी
7: सतगांव अहमदाबाद।
6: फिर कैसे हैं आप?
7: ठीक है, अपना सुनाइए कैसे हैं?
6: मैं बढ़िया हूँ।
7: मेरा फरमाइश करना चाहिए भोजपुरिया।
6: जी बताए क्या सुनना है, कौन सा सॉन्ग?
7: ऐसा तो राजा बाबू का है, जो फिल्म में हो गया है।
6: जी
7: राजा वो सरकारी लोग खटिया। ठीक है, राजा बाबू का है।
6: सॉन्ग कौन सा है?
7: सरकारी लोग खटिया ज्यादा लगे।
6: अच्छा जी, जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
7: बस आप सुनिएगा, हम सुनेंगे। और माल मेरी बेची है।
6: जी
7: और लोग।
6: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: कैसे हैं भारती जी?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आज छुट्टी में हूँ
0: जी। अपना नाम बता दें।
1: दानेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
0: जी जी।
1: और सब कैसे हैं?
0: और सब बढ़िया है।
1: और क्या हो रहा है?
0: नहीं, बस आपके साथ बातें हो रही हैं।
1: अच्छा जी
0: जी, बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमारा फरमाइश है, एक करीना पांडे और सविता पांडे का जुगल है गाना
0: जी,
1: प्रेम चिन्ह लाना की कौन जात हो।
0: अच्छा हाँ,
1: प्रेम चिन्ह लाना आदमी की कौन जात हो, ऐसे कुछ गाना है ना?
0: हाँ,
1: वही सुना देना।
0: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: सारे आपका टीम को और जितने दिन जिन परिवार है सबको।
0: ओके, फिर गाना
1: तो कल मैम चलेगा ना?
0: जी ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगकिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they watch the head, don't get it.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494। जी हाँ, 80029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: गुड आफ्टरनून।
5: गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम गणेश कुमार।
5: अच्छा, क्या हाल है?
6: बढ़िया है, अपना बताओ।

0: ये अभी थाने
1: जी,
0: थाने का ये पूजा करने
1: जी माता जी के मंदिर
0: जी
1: है। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है।

0: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: जी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो छोटा संघ ग्राम खोड़ा मन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार शाह।
0: जी, कैसे हैं आप?

0: मेरा हाल खबर बढ़िया है, आप सच रहे हैं, आप कैसे हैं, आपकी पूरी रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ और सारे रेडियो रिमझिम के टीम मेंबर ठीक हैं।
0: जी जी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आवाज तो चेंजिंग लग रहा है
1: जी।
0: चलिए ठीक है, बढ़िया बात है।
1: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश रख दीजिए, पहले मौसम बताइए, उधर का मौसम क्या है?
1: इधर का मौसम तो अभी बहुत गर्म है।
0: जी जी जी, गर्म तो इधर भी है।
1: जी
0: जी जी, गाना सुना दीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना के हम नहीं जानते, इसी करके गाना है ना, मोहम्मद लफी की आवाज में शायद होगा।
1: जी है गाना।
0: हाँ तो वही सॉन्ग सुना दीजिए, हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते।
1: ओके।
0: और डेडिकेट डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको सुनाएंगे, आपको होली इंडियन सपोर्ट करवा को।
1: जी।
0: और दोस्त में हो गया से खाना से मोहम्मद साबिर जी का, महेश से उत्तम कुमार जी, रामलेश्वर कुशवाहा जी की कहाँ से, अरविंद कुमार कला बरपुरधन से, नरेश सोहनी, नसुद्दीन खान, दीपक दास, वैभवशाह, जीना साहब, धर्मेंद्र यादव, धनराज प्रसाद कुशवाहा, रामबदन राम, भैरव पंडित, शकल प्रसाद शंभू, पारसनाथ कुशवाहा, पारस शर्मा, राजेंद्र यादव भारती, संतराल गौतम, हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्त खास मधुबलिया का सलाह जानकारी को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
1: जी, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगटोन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: अरे आमी तुमा को भालो मासे नको पगली।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिलजले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: राधे राधे।

ध्यान से, बड़े महापुरुष का वचन है जो सिद्ध महापुरुष है, उन्होंने अपने किसी एक शिष्य के लिए लिखा श्री हरि शरणम पत्र। बहुत जोर की बात, हम बड़ा एकांत में पढ़ा तो लगा, जो चीज जैसे अपने को मीठी लगे ना तो फिर अपने जनों को परोसी जाती है, ऐसे हमको अच्छा लगा इसलिए बात हम इसी में आपका उत्तर भी हो जाएगा। मनुष्य जीवन का चरम और परम एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। तीन बातें रखी गई, मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। जिस मनुष्य जीवन इस महान उद्देश्य की पूर्ति की साधना में लगा दिया गया, वही मनुष्य जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, अन्यथा बेकार गया। मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री जैसे बुद्धि, मन, इंद्रियां, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, तो आपको पूरा प्रयत्न करके

0: इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब भगवत प्राप्ति के लिए इनका हम प्रयोग क्या करें, मन बुद्धि धन जो भी हमें मिला है, तो बोले मन से निरंतर श्री भगवान के नाम का रूप का गुण का चिंतन करो, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को कहो गाओ, और शरीर से जितने भी कार्य होते हैं जो भी कार्य होते हैं वो सब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना से उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। प्राणी मात्र में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य हो, सब में भगवान है, ऐसी भावना से अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो, जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए, कोई बीमार है हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए, सब में भगवान विराजमान है, कोई प्यासा है पानी ला के दे दिया, हम यात्रा में जा रहे हैं बैठे हैं हम अपने सीट पर, रिजर्व सीट है, लेकिन कोई हमें वृद्ध दिखाई दे रहा है हम खड़े हो जाते हैं उसे बैठा देते हैं, सब में भगवत भावना करके कि हमारे भगवान सब जीवों में विराजमान है, जहां जैसी जिसको आवश्यकता हो अच्छी तरह से सेवा करो। समस्त जीवों में भगवान विराजमान है ऐसी भावना करके यदि सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। जब सबके हृदयों में भगवान देखा जाता है तो अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, पर किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक शरीर अपना काम करे तब तक अपनी किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए, अपने पैर दबवाना, अपने कपड़े धुलवाना या अपने लिए कोई भी कार्य, अपनी सेवा स्वयं करे और दूसरों की सेवा करने का उत्साह रखे। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो मान देना चाहिए, दूसरों से मान लेना नहीं चाहिए, सत्कार करना चाहिए, दूसरे से सत्कार कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से दूसरों के लिए, जैसे अपने को 100 रुपया प्राप्त हुए धर्म से प्राप्त हुए तो हम 90 रुपया अपने परिवार और अपने लिए खर्च, 10 रुपया हम कहें गौ सेवा, संत सेवा, बीमारों की किसी की सेवा में लगा दे, दूसरों को उदारता पूर्वक अपनी वस्तु का प्रयोग कराना चाहिए। उदारता पूर्वक अपने पास 4 रोटी है, 1 रोटी ली, चिड़िया गाय कुत्ता किसी को दे दिया, ये रोज का नियम रखना चाहिए। अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है ये जान करके, भगवान ही मेरे सामने इस रूप में आए हैं और उनकी ही दी वस्तु उनको हम दे रहे हैं, इसमें मेरा कोई कहीं भी किंचन मात्र अभिमान जागृत नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को वस्तु दी, भगवान की दी वस्तु भगवान को ही दे। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो बिमेव समर्पय, बहुत सुंदर बात है, अध्यात्म की है। अगर हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को वस्तु देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं, नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं, हमने उनको ये दिया, हमने वो सेवा की, हमने इतने बीमारों की सेवा, एक तरह का अहम पुष्ट हो जाता है इसमें भी। तो कह रहे अभिमान नहीं आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। और हर समय प्रसन्नता बढ़नी चाहिए कि हमारा जीवन भगवान की तरफ जा रहा है। किसी को कोई वस्तु देकर उसके बदले में लेने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। आपकी वस्तु थी, आपको दे दिया हमें, हे भगवान तो दियम वस्तु गोविंदम तो बिमे समर्पय, कुछ बदले में लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों की चाह होती है, इतनी तो होती है कि वो मुस्कुरा के हमको धन्यवाद कहे। संसार के भोगों में सुख है ये बात धीरे धीरे मिटा दो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है या भगवत प्राप्ति करना है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी जिससे भगवत विमुक्ता रहेगी, न भगवत प्राप्ति होगी न मोक्ष। इसलिए संसार में सुख है ये धीरे धीरे धारणा हटाओ। भगवान के नाम में सुख है, भगवान की लीला में सुख है, भगवान के गुणों में सुख है, भगवान के धाम में सुख है, ऐसी भावना करो। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है, लगता है सुख है लेकिन होता दुख है। अशुखम दुखालयम दुख योनयः, ये शब्द संसार के लिए कहे गए। असुखम इसमें सुख नहीं है, दुखालयम ये दुख का आलय है, दुख योनया इसमें जो भी भोग भोगोगे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। इस विचार से भगवान में सुख है ये अंदर भावना बैठा लो तभी भजन बनेगा, नहीं तो जिसका सुख बुद्धि संसार में होती है तो वही मन जाता है, वही चिंतन जाता है, भजन नहीं बनता। दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो, सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो, सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो। मन को, मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। किसी भोग में आसक्ति, किसी व्यक्ति में आसक्ति, कोई भोग की कामना, किसी पद की कामना, धन की कामना, परिवार की ममता, शरीर का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, इन्हीं से पाप बनते हैं। आते हो बहुत सावधानी पूर्वक संसार की आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का भगवान नाम जप और सत्संग के द्वारा इनका नाश कर दो। इनका नाश करने की साधना करनी चाहिए। हमारी कामना नष्ट हो जाए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, हमारी ममता नष्ट हो जाए, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाए, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम जप से। कामना भगवत प्रेम की करो कि हे भगवान आपसे हमें प्रेम हो जाए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ। ममता केवल भगवान के चरणों में करो। अहंकार इस बात का करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे पिता, मैं उनका पुत्र हूं, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं, ऐसी। ये जो दूषित आसक्ति है, कामना है, ममता है, अहंकार है, जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक ना भगवत प्रेम प्राप्त होगा, न मोक्ष प्राप्त होगा, न भगवत प्राप्ति होगी। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार ना हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्राणी से कभी द्वेष तो करो मत ही, तुमसे जो द्वेष करे उससे मित्रता का व्यवहार करो। बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति का मार्ग। किसी भी प्राणी से द्वेष करो मत, वो तुमसे द्वेष करे तो तुम मित्रता का व्यवहार करो। वो हमसे द्वेष कर रहा है और हम उससे मित्रता का व्यवहार करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब तुम्हें दुख दे, बिल्कुल उल्टा है, जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तिनो पे अनुग्रह कियो। देखो शरीर से प्राण कब चले जाए पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहां कहां में घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग पवर्ग कहां कहां भागना पड़ेगा। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना, तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना, अभिमान की भाषा में ना बोलना, जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो, कम बोलो विचार के बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये दो बातें। अभी उल्टा है हमारा, भगवत चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकेंड समय को जो बहुत मूल्यवान है वो भगवान में लगाएं। प्रायः एकांतिक में यही सब बातें होती है, एक एक सेकेंड को भगवान के चिंतन। पता नहीं मृत्यु कौन से सेकेंड में आ जाए, पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो, अगर हमारा भगवान का नाम चल रहा है तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अतः जीवन का एक क्षण भी प्रमाद आलस्य में प्रपंच की बातों में नहीं व्यतीत करना चाहिए, सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हमको जो बात जो व्यवहार बुरा लगता है वैसा बात वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें। भगवान से सदैव मांगते रहो ये, प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा हो हमारे लिए वैसा विधान करो, बस इस जन्म में आप मिल जाओ, चाहे हमें दुख का विधान करो चाहे सुख का विधान करो, पर इस जन्म में आप मिल जाओ। प्रभु आपसे बिलग होने वाली मैं कामना करूं तो कभी पूरी मत करना, आपसे मिलन वाली कामना पूर्ति हो जाए। हमारा इतना ही काम अब केवल रह गया है, शरीर से जितनी चेष्टा करें वो भगवान के लिए, मन से भगवान का चिंतन, मुख में भगवान का नाम जप, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान में अनुराग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का अंतिम समय आते आते पता नहीं कैसी स्थिति हो, कैंसर हो जाए कि किडनी फेल हो जाए क्या, आज स्वस्थ है आज ही हम भगवान की प्राप्ति का नियम ले, वाणी से कम बोलेंगे, कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे, सब में भगवान ऐसी भावना करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, इसी से हमें भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम और मोक्ष जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा जी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।